उधार श्याम, तुझे चुकाने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे देखता हूं और किश्तें अदा हो जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवद गीता हमें एक बहुत सुंदर बात बताती है कि हमारे जीवन में तनाव आता क्यों है और उससे बच कैसे सकते हैं। तनाव हमारे जीवन में इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास में लगे रहते हैं। जैसे कि एक मछली से आप कहेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ तो उसकी प्रकृति नहीं है। इसीलिए अगर आप प्रकृति के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आपके जीवन में तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन एंग्जाइटी बढ़ता चला जाएगा। परंतु जैसे ही आप अपनी प्रकृति में यानी स्वयं को जानें और उसके अनुसार अगर अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें तो आप तनाव से पूर्ण रूप से मुक्त होकर भी कार्य कर सकते हैं। कितना कार्य? जितना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आप हमेशा अपने कार्य को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे नहीं, जितना चाहे कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।

हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सब सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं गगन आपके साथ। जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सबके लिए। चलिए, आज का एक विशेष कार्यक्रम है और इस विशेष कार्यक्रम में एक खास हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खास बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं। खास बात यह कि भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चार मजबूत स्तंभों को निर्मित किया गया है। पहला है न्यायपालिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है विधायिका और चौथा है समाचार माध्यम, यानी कि जिसे हम कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। इसी संबंध में बात करने के लिए आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं, श्री कुलदीप शर्मा जी, जिनका 2011 से इस पद पर वो आसीन है और अनुभव देखा जाए तो प्रिंट मीडिया में भी वो काम कर चुके हैं। बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत कुछ आज हमें सीखने को समझने को मिलेगा, खासकर उन विद्यार्थियों को जो मास कॉम के स्टूडेंट हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
6: बहुत बहुत धन्यवाद गगन आपका, बहुत बहुत नमस्कार।
5: सर, मेरी जो मुलाकात है ये आपसे सेकेंड मुलाकात है और मैं वाकई बहुत खुश हूँ, और खुशी इस बात से हो रही है कि तब से लेके अब तक बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो चुकी हैं आपके जीवन में, और जो आपका अनुभव है उस अनुभव को हम यहाँ साझा करना चाहेंगे। हम आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे, पत्रकारिता के बारे में जानना चाहेंगे।
6: जी, जी, जी, जी।
5: लेकिन पत्रकारिता से आने से पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहता हूँ, ये जो सफर की शुरुआत रही कैसे रही? अमूमन होता क्या है कि लोग शौकिया बतौर आ जाते हैं या दिमाग में रहता है कि नहीं, मुझे मीडिया क्षेत्र में जाना है, पत्रकार बनना है, तो थोड़ा सा बताइए प्लीज।
6: गगन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मैं जानता हूँ, मैं चाहता भी हूँ कि लोग इस तरीके से अपने बारे में कहें और विस्तार पूर्वक उन सब चीज़ों को प्रसारित करें। जहाँ तक मेरा अपना व्यक्तिगत सवाल है, मैं स्टूडेंट लाइफ से, विद्यार्थी जीवन से ही मेरे को पत्रकारिता का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और क्योंकि पत्रकार प्रेस परिषद एक हुआ करती थी
5: जी,
6: तो पिताजी के माध्यम से मैं कभी कभार उस परिषद में जाता था। ताजी सामाजिक कार्य करता थे, तो उन सब चीज़ों में जब मैं देखता था तो मेरा कभी मन करता था कि मैं भी पत्रकार बनूं और मुझे भी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने आप में एक उपलब्धि हासिल हो। उस समय मुझे लेखन का शौक था, तो मैं गजल, कविता, कुछ कहानियां इस तरीके की उस समय की चीजें थी तो मैं लिखा करता था और बड़ी सराही जाती थी। कई बारी कई समाचार पत्रों ने उसको
5: प्रकाशित
6: भी किया। एक पत्रकार थी बहुत पहले, उसका नाम था पांचजन्य, और जो अभी भी है।
5: जी है, जी है।
6: पांचजन्य में भी मैंने काफी लिखा, बड़ी अच्छी उसकी कमेंट्स आते थे। उसके बाद कई ऐसी पत्रिकाएं रही, एक सरिता चला करती थी
5: पत्रिका। जी जी जी।
6: तो उसमें भी एक आपका कोना करके एक वो था, स्तंभ था, उसमें लिखा।
5: तो कह सकते हैं कि एक बीजारोपण उस समय से हो गया आपके जीवन में।
6: बिल्कुल।
5: उसके बाद कब लगा कि मुझे इस क्षेत्र में ही आना है, मुझे इस क्षेत्र में ही काम करना है?
6: बिल्कुल गगन, ये बात बहुत अच्छी थी कि उस समय जहाँ लोग अपने जीवन यापन के लिए, हम बहुत सारी चीजों को करते थे और जीवन यापन की में रोजी रोटी की तलाश ये सब होता रहता था, और उसी बीच मुझे कहीं और क्षेत्रों में भी काम करने का मौका मिला। कई क्षेत्रों में, बैंकिंग के क्षेत्र में मैंने काम किया, सुरक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, और उसके बाद मेरा ये पत्रकारिता का जो मोह था वो मुझे ले आया।
5: जी, इस मोह से मुझे एक बात याद आ रही है, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ रोक कर आपसे वो पूछ लूं।
6: जी।
5: क्योंकि आज के समय में जब हम पत्रकार या पत्रकारिता को देखते हैं और फिर एक समय के बाद हम सुनते हैं उन्हीं लोगों से जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या किसी श्रोता से या किसी पाठकगण से या किसी दर्शक से, कि मेरा इस क्षेत्र से मोह भंग हो गया है, क्या मैं अगर कुछ गलत बात कर रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा।
6: सही है आपकी बात।
5: क्योंकि बहुत चीजें बदली है सर।
6: जी।
5: तो क्या कभी कुछ ऐसा लगा कि उस समय से आज के समय में कुछ परिवर्तन आया पत्रकारों की सोच में, पत्रकारिता में?
6: बिल्कुल सही बात है गगन, ये मोह भंग होना या मोह भंग जिसे आप कह रहे हैं उसकी संज्ञा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां मोह भंग हो ही नहीं सकता। वास्तव में जो पत्रकारिता है
5: वास्तव
6: वो एक पूजा है।
5: बहुत सही कहा।
6: और पत्रकारिता एक ऐसी पूजा है जहां से आपका मोह भंग कभी हो ही नहीं सकता। सबसे पहले जो हमारे वेद शास्त्रों में पत्रकारों के बारे में जो कहा गया है,
5: नारद जी के बारे
6: में, वो नारद जी के बारे में कहा गया।
5: जी जी जी।
6: नारद जी सबसे पहले पत्रकार थे।
5: बहुत खूब, बहुत खूब।
6: और नारद जी को अगर कहे कि उनका मोह भंग हो गया,
5: हाँ।
6: तो जहाँ भगवान विष्णु स्वयं उन्हें पत्रकारिता की प्रेरणा देते रहे या स्वयं वो उनके ऊपर अपनी दृष्टि बना के रखे, तो मोह भंग कैसे हो सकता है?
5: क्या बात।
6: सीधी भगवान विष्णु की कृपा होती है पत्रकार के ऊपर, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये मेरा अपना मानना है और कई बार मैंने इस विश्वास के साथ मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ।
5: बहुत खूब।
6: तो मोह भंग तो नहीं कह सकते।
5: अरे वाह। आपकी बातों में मुझे बहुत एक सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन जब मैं समाज में देखता हूँ तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं और धरातल पर कुछ और होता है, पर्दे पर कुछ और होता है, कागज कलम कुछ पर कुछ और होता है, जबकि हम सच्चाई को देख रहे होते हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसा अनुभवी आदमी अगर मेरे साथ जुड़ा हुआ है तो उस अनुभव को मैं साझा करना चाहूंगा और आपसे उन बातों को जरूर जानना चाहेंगे जो आपने सारी चीजें देखी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं। सो लिसनर्स, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के आप सीईओ हैं कुलदीप शर्मा जी। आप कहीं जाएगा मत। हाँ, अगर आपके जहन में कोई सवाल आ रहा है या कुछ बात आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर। फिलहाल एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन आपके साथ, और साथ ही साथ आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप हैं कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO हैं। आज जिस विषय पर बात हो रही है, जाहिर सी बात है जब ये परिचय सामने आता है तो परिचय कि कोई व्यक्ति मोहताज नहीं रहता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं पत्रकारिता के बारे में, समाचार के बारे में, प्रिंट मीडिया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने पत्रकारिता के बारे में बात छेड़ी थी, जो कि बात अधूरी रह गई है सर, उसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात निकलकर यही सामने आती है कि किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे कि पत्रकारिता है क्या।
2: देखो गगन, पत्रकारिता एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसे परिभाषित किया जा सके, एक बृहद है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जहाँ नारद जी और विष्णु जी, नारद जी द्योतक है पत्रकारिता के, और विष्णु जी की साक्षात कृपा उनके ऊपर रहती है, ऐसे ही हर पत्रकार जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आप हो, आप भी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, जो संचार माध्यम है, ये चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, स्तंभ की कोई परिभाषा नहीं होती, स्तंभ स्तंभ है और उसकी मेरी औकात नहीं कि मैं इसको परिभाषित कर सकूं।
1: जी जी,
2: मैं अगर
1: जी
2: मैं हूं तो
1: नहीं, आपकी बात बिल्कुल बहुत अच्छी है और सटीक जवाब आप हमें दे रहे हैं। लेकिन सर, मैं ये जो मेरा सवाल करने का उद्देश्य यही था कि स्टूडेंट अगर समझें, एक साधारण व्यक्ति समझे कि पत्रकारिता किस तरीके से होती है, या जो पुराने लोग हैं वो देखते थे कि पत्रकारिता पहले समय में ऐसी होती थी और आज के समय में, आज के परिदृश्य में अगर हम देखें तो बिल्कुल पत्रकारिता बदल चुकी है, तो ये इस तरीके से मेरा सवाल करने का मकसद था सर।
2: कोई बात
1: जी,
2: आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन एक मैं वो परिभाषा वाली बात कर रहा था, और इसमें जो आपका और जो आज के समय पत्रकारिता का जो माध्यम है या उसको परिभाषित करने की बात है, परिभाषित आज भी नहीं किया जा सकता, लेकिन पत्रकारिता अपने आप में एक ऐसी प्रेरणा है जो एक जगह से दूसरी जगह के सूचना तंत्र को दूसरे तक पहुंचाना होता है, और उसके जो बीच के जो कार्य हैं वो पत्रकारिता होती है। आज के समय में लोग, क्योंकि आपका जो कहना है या जो पूछना है
1: जी,
2: वो यही है कि बदल चुकी है,
1: बदल चुकी है,
2: बदला कुछ नहीं है, पहले भी पत्रकारिता ऐसे ही थी, आज भी पत्रकारिता ऐसी है, जो स्वच्छ अपने और दूसरों के विचार हैं
1: जी,
2: उन विचारों को रेखांकित करके
1: जी
2: या शाब्दिक करके
1: जी,
2: उन शब्दों को दूसरे कानों तक पहुंचाने का माध्यम जो है पत्रकारिता है। आज के समय में पत्रकारिता को हम मानते हैं टीवी चैनल, अखबार, वेब मीडिया
1: जी,
2: समाचार चैनल, ये जो है, या रेडियो चैनल, जिनके माध्यम से सूचनाएं
1: पहुंचती
2: हैं और पहुंचती हैं, आदान प्रदान जो होता है यही है। और अगर इसके अलावा आप और इसको खुल के कुछ और जानना चाहते हैं तो वो आप
1: मेरा मतलब ये था कि सर, ये अगर हम चीजें फिल्मों में भी देखें कि वो चीजें हमें मिलती हैं पुराने समय की फिल्मों में, एक कलम का सिपाही सच उसने देखा और सच लिखने के लिए वो तैयार है, और आज के समय में अगर कुछ उसने सच देखा तो या तो उसकी टीम मैनेजमेंट या कुछ और उसको कुछ और लिखने के लिए शायद कहा जाए, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो मैं माफी चाहूंगा, या टीवी चैनल्स की भी अगर हम बात करें, क्योंकि मैं भी खुद एक मीडिया का ही पार्ट हूं, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ क्योंकि जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपने करियर को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम सबके लिए जानना समझना जरूरी है कि कितना परिवर्तन आया है, क्या हो रहा है। टीवी चैनल्स को जब हम देखते हैं, डिबेट शो हो रहे होते हैं, या दूरदर्शन की बात करें, जो दूरदर्शन बहुत तौर तरीके से डिबेट होती हैं, वहाँ चीखना चिल्लाना नहीं होता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कप प्लेट नहीं तोड़ी जाती हैं, या कुछ गाली गलौज नहीं होता है, तो दूरदर्शन में तो हमने बहुत सादगी के साथ डिबेट्स देखी हैं, और दूसरे प्राइवेट चैनल्स में जब हम देखते हैं तो क्या ये टीआरपी का कोई खेल है या क्या होता है ये सर, ये समझना चाह रहा था मैं आपसे क्या होता है
2: ये गगन। एक अपने तरीके का लोगों ने जो हमारे समाचार माध्यम है, समाचार चैनल्स हैं, सबने अपना अपना, देखिए मुझे सादा थाली का भोजन अच्छा लगता है तो मैं सादा थाली का भोजन ही खाऊंगा, लेकिन किसी को उसी थाली में चिकन पसंद करता है तो चिकन खाएगा
1: जी।
2: अन्य इसी तरीके से सबके अलग अलग स्वाद और अपनी अलग अलग इच्छाएं होती है
1: जी।
2: समाचार चैनल्स में जो समाचार दूरदर्शन हो या प्राइवेट चैनल्स हो, दूरदर्शन में जो कुछ दिखाया जाएगा वो मर्यादित होगा क्योंकि वो उस सरकार के अधीन होता है, उसका सब कुछ सरकार के अधीन होता है। और जो प्राइवेट न्यूज चैनल्स होते हैं वो एक ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी के अधीन होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन हाउस है या जो वो दिखाना चाहते हैं आपको, तो वो अपनी टीआरपी, क्योंकि टीआरपी नहीं होगी तो उनकी

हो रहा है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है पत्रकारिता के बारे में, आज के समय की पत्रकारिता के बारे में, और पुराने समय में जो सर ने देखा, जो आज के समय में वो देख रहे हैं, इसका एक अंतर हम सर से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप हैं हमारे साथ श्री कुलदीप शर्मा जी, जो कि लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के CEO है। आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, इसके तहत। और आज हम जो बात कर रहे हैं पत्रकारिता के संबंध में बात कर रहे हैं, करियर के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप मास्कॉम के स्टूडेंट हैं या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, विद्यार्थी इस मास्कॉम के बनना चाहते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि शारदा विश्वविद्यालय आप आकर देखें, यहाँ का माहौल देखें, यहाँ की फैकल्टी से मिलें और देखें कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं और किस तरीके से ऐसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है, जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री कुलदीप शर्मा जी, लाइव उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड के आप CEO हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: सर। मैं सीधे लफ्जों में यही जानना चाहता हूँ, बातों को हम नहीं घुमाते, हम ये जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार को किन किन खास बातों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को उसको आगे लेकर जाना चाहिए, वो क्या विशेषताएं उसके अंदर होनी चाहिए।
1: गगन, वास्तव में बहुत अच्छा सवाल है ये आपका, और खास तौर से हमारे जो मास्कॉम के विद्यार्थी हैं जो हमें सुन रहे हैं, मैं उन सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता का क्षेत्र एक खाली पत्रकार होना ही नहीं होता, पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा एक बृहद क्षेत्र है और उस बृहद क्षेत्र में बहुत सारे साधन हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अपनी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा एक पत्रकार के अंदर होनी चाहिए। एक तो व्यक्तित्व उसका ऐसा होना चाहिए जिस पे कोई दाग ना हो और ना ही कोई दाग लगे। निर्भीकता इतनी होनी चाहिए कि कोई दाग लगाने की कोशिश भी करे तो वो 100 बार सोचे, किसी भी कारण से अपने आप को कमजोर ना महसूस हो और अपनी लेखनी की ताकत, शब्दों की मर्यादा, भाषा का नियंत्रण, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं सभी अपने विद्यार्थियों को कहूँगा कि अपनी इन सब विशेषताओं को बना के रखें और हमेशा पत्रकारिता के क्षेत्र को बढ़ा के रखें, कलंकित होने से बचाते रहें, क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है, ऐसा हथियार है
0: जी,
1: जहां एक छोटी सी बात से लाखों लोगों का कैरियर बर्बाद हो जाता है।
0: सही का
1: जी, गोली से एक मर सकता है, दो मर सकते हैं, चार मर सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट से 100, 50, 200 लोग मर सकते हैं, लेकिन कलम बहुत लोगों को जिंदा कर सकती है, बहुत लोगों को मार सकती है। कलम का सही इस्तेमाल करें, लेखनी का, अपनी लेखनी के ऊपर विश्वास रखें, अपनी भाषा का नियंत्रण रखें, अपने आप में नियंत्रित रहें और इन्हीं सभी अच्छी विशेषताओं के साथ पत्रकारिता करें। मेरा सभी को यही अनुरोध है और यही मेरा सुझाव है।
0: बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दी, जो कि एक बात का निचोड़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इन बातों को याद रखेंगे, गांठ बांध कर रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका काम बोलेगा, आपकी एक अपनी पहचान होगी और इस तरीके से आप जिंदगी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ सकते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार की रुकावट आपके सामने नहीं आएगी। तो सर, कुछ और अगर आपको लगता है कि गगन आपकी तरफ से ये बात छूट रही थी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ, आपके अपने मन की बात तो आप भी अपने मन की बात रख सकते हैं, अदरवाइज मुझे लगता है कि मैंने तो अपने मन की बात कम समय में ध्यान रखते हुए आपसे जान ही ली है।
1: नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मेरा अपना एक कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और अपने विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आप प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से एक तो बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगा और सभी अपने मास्कॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं या हमारे जितने भी श्रोता हैं, मैं सभी श्रोताओं को जो मन में ये लेके बैठे हों
0: जी
1: कभी कि पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सबसे पहले आपने कहा था कि मेरा मोह भंग हो गया,
0: जी
1: ऐसा क्षेत्र नहीं है। पत्रकारिता एक बहुत अच्छा बृहद क्षेत्र है और ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और स्तंभ हमेशा मजबूत होता है।
0: क्या बात है, बहुत खूब।
1: और वो हमेशा मजबूती के साथ अपने लोकतंत्र को या छत को या जिसको भी वो अपने कंधे पे रख के खड़ा रहता है। तो कृपया मैं सभी अपने श्रोताओं को ये कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि वो आपका ऐसा माध्यम है कि आपकी बात सुनता है और जहां पहुंचानी होती है वहां पहुंचाता है।
2: बहुत गुण, बहुत गुण।
1: पत्रकारिता क्षेत्र के सभी साथियों को, बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को और इस क्षेत्र में कार्यरत सभी साथियों को यही कहूँगा कि इस पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ है मजबूती के साथ हमेशा बनाए रखें और इसका मान सम्मान मर्यादा सभी का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे स्टूडियो आए, आपने बहुत बहुमूल्य बातें आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, इस बात के लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे एक छोटा सा वायदा जरूर लूंगा, जब भी आपको समय मिले आप जरूर हमारे स्टूडियो आएगा ताकि और अच्छी बातें हो सकें आपके साथ।
1: मुझे जब भी शारदा FM मुझे बुलाएंगे और जब भी आप मुझे आमंत्रित करेंगे मैं अवश्य आपके साथ आऊंगा और आपके पास जो भी आप मेरे से कहेंगे मैं करूंगा।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो आई होप लिसनर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये साक्षात्कार, ये इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा क्योंकि यहां हमने पत्रकारिता के क्षेत्र के बारे में बात की, विद्यार्थियों के बारे में बात की, ये किस तरीके का क्षेत्र है, अगर आप यहां आते हैं तो किस तरीके से अपने आप को आप आगे लेकर जा सकते हैं, अपने भविष्य को किस तरीके से संवार सकते हैं, ये सारी बातें हुई लाइव उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के CEO श्री कुलदीप शर्मा जी से। ये साक्षात्कार आपको कैसा लगा 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल करके बताएगा जरूर और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलेगा और इसके अलावा सुनो शारदा 90.8 FM का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करते हैं तो हमारी जो प्रोग्रामिंग है उसको आप कहीं पर भी सुन पाएंगे। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार,
1: बहुत बहुत नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। महावारी के दौरान स्वच्छता के लिए आप विविध साधनों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पैड, टेम्पून, महावारी कप या साफ कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: यदि आप पैड का उपयोग करते हैं तो उसको जितना हो सके उतनी बार बदलें। दिन में कम से कम 2 से 3 बार पैड को बदलना चाहिए।
0: महावारी में सबसे अच्छा संभावित विकल्प महावारी कप है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है।
1: महावारी कप, सैनिटरी पैड और टैम्पोन के मुकाबले 5 गुना ज्यादा खून की मात्रा को एकत्र कर सकते हैं।
0: महावारी कप बैक्टीरिया के संक्रमण के जोखिम को कम करता है।
1: इसका दोबारा प्रयोग भी किया जा सकता है, इसमें खर्च भी कम होता है।
0: महावारी के दौरान साफ कपड़े का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक साफ कपड़े को मोड़कर पैंटी में रखें। प्रयोग के बाद उसे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करके धूप में सुखाएं।
1: प्रयोग किए गए कपड़े को छूने से पहले हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहन लें।
0: गंदे कपड़े का 1 हिस्सा क्लोरीन और 9 हिस्सा पानी के घोल में कम से कम 20 मिनट तक भिगो कर रखें। अगर क्लोरीन नहीं है तो कम से कम साबुन के पानी में 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। पानी में साबुन की सही मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए देख लें कि पानी को घोलने और हिलाने पर उसमें बुलबुले हों।
1: हाथों पर दस्तानों या प्लास्टिक की थैली को हाथ में पहनकर गंदे कपड़े को सामान्य तरीके से साबुन और पानी से साफ करें।
0: साफ किए गए कपड़े को धूप में सुखाएं। बचे हुए साबुन के पानी को फेंकने के लिए गड्ढा खोदकर उसमें डाल दें।
1: अपने हाथों से दस्ताने या पॉलिथीन को निकाल दें और हाथों को पानी और साबुन से अच्छे से धो लें।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरी दादी बोलती है तेरी शादी कभी नहीं होगी। तो दादी बोलती है तो दुनिया में सबसे अलग है।
3: तेरी दादी और दुनिया को पता नहीं है।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:03 हो चुके हैं। एक तारीख है हमारे आसपास और क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। उसके बारे में बातें करेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुरक्षित चलिए, सुरक्षित घर पहुंची, सुरक्षित ऑफिस पहुंची, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इंतजार जिस घड़ी का था हमें यानी कि सावन का महीना शुरू हो चुका है। इस सावन के महीने की आपको बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है एक तारीख यानी कि शनिवार, रात ही नींद नहीं आती, क्या है खास जानेंगे मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

प्यार करते रहिए, खुश रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, लापरवाही मत बरतिएगा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की आवश्यकता। हंसते मुस्कुराते जब आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी मंजिल आपके बेहद करीब होती हुई नजर आएगी। क्या है खास जान लेते हैं। खास बात यह कि दिल्ली NCR में उमस का माहौल बना हुआ है, आंख में चोली चल रही है, कभी बारिश हो जाती है, कभी उमस हो जाती है, कभी धूप खिली खिली नजर आती है। लेकिन सच बात तो यह कि ऐसे मौसम में आपकी तबीयत खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आछी आछी, ये क्या था, ये मतलब एक डेमो था, डेमो मतलब ऐसे लोगों को दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं। हाँ, सच बात तो यह है कि वायरल फीवर, वायरल ये सारी चीजें चल रही हैं। तो इस तरीके से अपने आप को बचा कर रखिए, खान पान का ध्यान रखिए, शुद्ध खान पान अपना रखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। लेकिन जैसी तबीयत खराब हो जाती है तो लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि गुनगुना पानी आप पीजिए, डॉक्टर अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तला भुना खाना ना खाइए। और कहते हैं बड़े बुजुर्ग, घरेलू जो उपाय है कि मिश्री के दाने प्लस काली मिर्च का अगर आप सेवन करते हैं, रस उसका अंदर आप जाने देते हैं और हल्का उबला हुआ पानी अगर आप पी रहे हैं तो वो आपकी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट की राय जरूर लीजिएगा, खुद से एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करेगा। और जब जल भराव की स्थिति हो जाती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, तो वहाँ हमें सड़क क्या है, गड्ढे क्या है, कहाँ है, सीवर खुला हुआ है, यानी कुछ भी नज़र नहीं आता। इसलिए सावधानी पूर्वक चलेगा। और जो बिजली के पोल होते हैं, जो खंभे होते हैं, वहाँ करंट उतरने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि जन धन हानि ना हो, अपनी सेहत का ख्याल रखे। शासन प्रशासन भी अपना काम करता है, बस हमें अपना सहयोग देना है। हाँ, वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑफ सुरशादा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM। क्या बात आए है।

0: हाय, मैं रण विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: mixing in the house.
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 11 66 66 पर संपर्क करें।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को

0: लक्षण।
1: वेलकम बैक।
0: बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: बिल्कुल सच बात है कि अधिक जानकारी के लिए, विस्तृत जानकारी के लिए विजिट करें, दौरा करें, भ्रमण करें शारदा विश्वविद्यालय के सांगन में। जब आप यहां आएंगे तो निश्चित तौर पर एक खुशनुमा माहौल आपको मिलेगा। एक छत के नीचे बहुत सारे कोर्सेज आपको जानने को, समझने को, सीखने को मिलेंगे। और जब आप आते हैं तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि आपकी फैमिली भी आती है और बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि आपकी फैमिली भी सवाल जवाब करती है। और जब आप मुतमईन हो जाते हैं, यानी कि सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब आप गृह प्रवेश करते हैं, दाखिला लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इतना खूबसूरत माहौल ग्रेटर नोएडा के शारदा विश्वविद्यालय के सांगन में आपको मिलता है, और इसीलिए आप यहीं के होकर रह जाते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी।
2: शाबाश, क्या बात है, शाबाश। जिस तरीके से तुमने जो वजन रखा है ना, मतलब 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा नहीं, मतलब 250 ग्राम का जो वजन रखा है, निश्चित तौर पर बहुत आगे जाओगे। तुम्हें मैं उज्बेकिस्तान भेज के मानूंगा। देर इज अनदर वन शाखा फ्रॉम शारदा विश्वविद्यालय।
1: नहीं, हमने तुम्हें शाखा सिखाया,
2: मैंने इसलिए बोला तुम कहीं भूल तो नहीं के सिखा दिया।
1: चलिए, आज से कुछ खास होने जा रहा है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। खास बात है कि गैस सिलेंडर का हम जिक्र करना चाहेंगे, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को, समझने को मिल रही हैं कि यानी कि आज से जो 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर है, उसके दाम घटाए गए हैं। दिल्ली में इसकी जो कीमत है 202 रुपये कम हो गई है, कोलकाता में 209 रुपये की कटौती की गई है, और घरेलू गैस सिलेंडर यानी कि 14.2 किलोग्राम का जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग और इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी मालूम हासिल है हमें, तो उसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। पहला नशा जो है मोहब्बत का, बहुत खूबसूरत होता है, यानी कि यही गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रहा हूं फ्रॉम द मूवी आई है वो, मतलब इस गाने को रिक्रिएट किया गया, और जो जीता वही सिकंदर का ये गाना है, और अरमान मलिक की आवाज और प्रगति नागपाल की आवाज में पहला नशा, ब्यूटिफुल ट्रैक, ऑनली ऑन सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: पेंशन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित होता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
2: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
1: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
1: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त बज चुके हैं 9:44 हो चुके हैं। एक तारीख है यानी कि 1 अगस्त। वक्त हाथ से रेत की माफिक फिसलता चला जाता है और कब क्या हो किसी को नहीं पता, लेकिन ये सच बात है कि अगर आपको जो काम दिया जा रहा है, असाइन वर्क मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये असाइन किया गया है तो टाइम से करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अदरवाइज एक मेल आएगा, आई वॉन्ट दिस वर्क ईओजी। मतलब नहीं होता, मतलब होता है ईओजी बोले तो एंड ऑफ द डे। और सोचिए उस वक्त आप कहीं परेशानी में हो या कहीं खुशी में हो तो टेंशन हो जाती है ना, तो इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे सब अच्छा होगा। जैसे कि आज का वक्त यानी कि एक तारीख बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की थी कि हर महीने की पहली तारीख को बदलाव देखने को मिलते हैं। 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर है उसमें दाम नहीं घटाए गए, और मतलब उसमें दाम घटे हैं सॉरी, और घरेलू गैस सिलेंडर पर कोई दाम नहीं घटाया। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। बात निकल कर ये सामने आ रही है कि रेलवे काउंटर पर भीड़ को जो व्यवस्थित करने के लिए नया टोकन आधारित एक सिस्टम शुरू किया गया है, एक बात। दूसरी बात यह कि AC तत्काल बुकिंग के लिए सुबह 8:30 से और नॉन AC तत्काल के लिए सुबह 9 से टोकन मिलने की जो प्रक्रिया है वो तय की गई है। इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, यानी कि बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 21 जुलाई थी, लेकिन 1 अगस्त से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब बिलेटेड लिखा है ना इस पे, अच्छा मतलब फीस लगेगी। रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और नियमों के अनुसार अतिरिक्त वित्तीय पेनल्टी लागू हो गई है। भाई और बंधु ये सही था ना, बिलेटी हजरे मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ। क्या बात है, सॉफ्ट नंबर सिर्फ सुरू शारदा 90.8 FM पर। सुरक्षित चलेगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना आपका बड़ा इंतजार कर रहा है बेसब्री से।

हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आपने वॉल्यूम यानी कि ध्वनि यानी कि आवाज थोड़ी सी बढ़ा ही ली होगी, क्योंकि जब हम सॉफ्ट नंबर को सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, किसी की यादें ताज़ा हो जाती हैं, मीनिंग अच्छे होते हैं, म्यूजिक अच्छा होता है, साथ में अगर कोई साथ हो तो माशाल्लाह तो दिन बन ही जाता है। आए हाय, चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते ज्ञान विज्ञान की बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं और यही एक वजह है कि लोग हमें सुनते हैं, हमसे बात करते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा रहे होते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बहुत सारी बातें की, यानी कि बताया कि क्या क्या खास होने जा रहा है आज। कमर्शियल गैस सिलेंडर की बातें की, यानी कि 19 किलोग्राम का जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में कटौती की गई है और रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग पर भी कुछ टोकन की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। इनकम टैक्स रिटर्न करने की जो आखिरी जो तारीख थी वो थी कल, और उसके बाद अगर आप कुछ उस पर काम करते हैं, ITR रिटर्न करते हैं, तो निश्चित तौर पर का फाइन आपको देना पड़ेगा। आज के दिन अगर हम देखें तो क्या खास हुआ है, आज किसका बर्थडे है, तो उसके बारे में मालूमात होना बहुत जरूरी है। तो कुछ चीजें जब मैं पलट रहा था तो बात निकल कर ये सामने आ रही कि आज का बर्थडे यानी कि मीना कुमारी और जैकी श्रॉफ का आज बर्थडे, तो उनको बहुत बहुत दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका भी आज जन्मदिन है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनकी आज पुण्यतिथि है उनको हम नमन करते हैं। और आज के दिन यानी कि राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस यानी कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया जाता है, तो इस दिन की और उन पर्वतारोहियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत आज से की थी, तो बहुत बहुत दिली दुआएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, आने वाला समय अच्छा गुजरे, सावन के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11, इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं छोड़कर जा रहा हूं, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार। क्या बात है, जिंगो चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, सुखविंदर पाजी की आवाज सिर्फ सुरो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
6: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: So, where are you? The world is here at Sharda University.
7: नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही, जहां हम बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में और बताते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको सेहतमंद तो रखती हैं बल्कि आपके लिए फायदेमंद भी होती हैं। क्यों आयुष
8: जी? बिल्कुल ठीक कहा शशि आपने। पिछले कई हफ्तों से हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के बारे में। हमने अपनी कई बहनों, भाभियों और बहुओं से उनकी पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अपनी देखभाल कैसे करें, उस विषय में बात करी है।
7: बिल्कुल आयुष, तो अगर मैं संक्षिप्त रूप में अपने श्रोताओं को बताऊं तो पहले तिमाही में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने आसपास के चिकित्सा केंद्र में रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकारी सेवाओं का लाभ पाएं, IFA और कैल्शियम की गोलियां खाएं, दूसरी तिमाही में बढ़िया पौष्टिक आहार का सेवन करें, जरूरी टीकाकरण करवाएं, आयरन और कैल्शियम की गोलियां खाना ना भूलें, तीसरी तिमाही में गोलियों और पोषण के साथ साथ हल्का व्यायाम करें, रेगुलर चेकअप करवाएं, जरूरी टीकाकरण करवाएं और संस्थागत सुविधाओं में प्रसव करवाने की तैयारी करें। साथ ही 102 नंबर याद कर लें, क्योंकि प्रसव का वक्त आने पर यही नंबर डायल करना होगा अस्पताल तक पहुंचने की निशुल्क सुविधा का लाभ उठाने के लिए।
8: बिल्कुल सही बात कही आपने शशि, लेकिन एक बात तो आप बताना भूल ही गए। टिकन भाभी ने हर एपिसोड में बताया था कि गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का खान पान, आराम की जिम्मेदारी उसके अकेले की नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, खास तौर पर गर्भवती महिला के पति की।
7: टीकन भाभी, आप तो 100 साल जिएंगी। अरे अभी आपके बारे में हम बात कर रहे थे आयुष के साथ, और देखे आपका नाम लिया और आप स्टूडियो में हाजिर भी हो गई, बड़ी अच्छी बात है आपकी।
9: भैया 100 साल की दुआ मत दो, एक स्वस्थ जीवन की दुआ दो। जरूरी है कि जितने भी वर्ष जिए स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे।
7: बिल्कुल सही कहा टीकन भाभी आपने, इसीलिए तो हम ये कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई हर सप्ताह लेकर आते हैं।
9: यह कार्यक्रम तो लोगों की जिंदगी में इतना बदलाव ला रहा है कि क्या बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं वह कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, जिन्हें घर बैठे निशुल्क इतनी जरूरी जानकारी मिल रही है।
8: बिल्कुल भाभी, और मैं आपको बता दूं, यह सब संभव हो पा रहा है आपके और सेहतिया भैया की मदद से। तो दोस्तों आपको बता दें कि सेहतिया भैया जी और उनकी पत्नी टिक्कन देवी ने वादा किया है कि वे अपने अनुभव और ज्ञान हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे।
9: भैया, इसमें कौन किसी पर एहसान कर रहा है, यह तो हमारा फर्ज है। आखिर जो हमारे साथ हुआ वह औरों के साथ ना हो। हम अज्ञानता में थे, हमने ना अपने और ना ही अपने प्रियजनों की सही तरह से देखभाल की। पैसा गवाया, समय गवाया, दर दर भटके, अज्ञानता और सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर हम सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाए। जब सरकार हमारे लिए इतना कुछ कर रही है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, उनका पैसा बचाएं और उन्हें उनकी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
7: अरे टीकन भाभी, इसीलिए तो पूरा ब्लॉक आपको और सेहतिया भैया की इतनी इज्जत करते हैं। आप जिस तरह से बात करती हैं उसमें अनुभव के साथ साथ अपनापन भी महसूस होता है।
8: भाभी जी, आपकी सलाह के अनुसार आज हम अपने एपिसोड में नवजात शिशु और उसकी माँ की देखभाल के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमने समुदाय से बहुत सारे सवाल इकट्ठे किए हैं।
9: तो फिर देर किस बात की, पूछिए, जो इतनी पढ़ाई की है वो कहीं तो काम आए। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं सभी गर्भवती महिलाओं से आग्रह करती हूँ कि किसी संस्थागत चिकित्सा केंद्र में ही बच्चे को जन्म दे, यह आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
8: टिकन भाभी, इस बात को दोहराने के लिए शुक्रिया। तो पहला सवाल है कि क्या नवजात शिशु को पोंछ कर साफ करके या नहला कर उसकी माँ को देना चाहिए?
9: ना पोंछ कर ना नहलाकर, जैसे ही बच्चा पैदा हो उसे तुरंत माँ की छाती से लगा देना चाहिए। इससे कंगारू मदर केयर यानी त्वचा से त्वचा का संपर्क कहते हैं। इससे बच्चे का शरीर माँ की गर्माहट पा लेता है और सुरक्षित महसूस करता है।
7: तो भाभी जी, जैसा कि मैं जानता हूँ आपके भी दो बच्चे हैं, तो आपका अनुभव क्या रहा था?
9: मेरा पहला बच्चा स्वस्थ सिंह सरकारी अस्पताल में पैदा नहीं हुआ था। वहाँ तो पैदा होते ही उसे नहला दिया और दो चार घंटे के बाद मुझे मेरा बच्चा मिला था। बहुत परेशानी हुई थी, उसे ठंड लग गई थी और दूध पिलाने में तो बहुत समस्या हुई थी, उसकी जान पर आ पड़ी थी। जब हम उसे सरकारी चिकित्सा केंद्र में ले गए थे तो डॉक्टर ने समझाया कि बच्चे को पहले 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए और तुरंत माँ की छाती पर बच्चे को रख देना चाहिए। तो लाभंत्री के जन्म पर मैंने ऐसा ही किया। वह स्वस्थ सिंह से ज्यादा स्वस्थ है। लाभंत्री को तो एक घंटे के अंदर पहला दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो भी दिया गया।
8: कोलोस्ट्रम जो माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध होता है, उसे तो बच्चे के लिए पहला टीका कहा जाता है जो उसे बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है।
9: सही कहा आपने, कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को संक्रमण और बीमारियों से बचाती है। यह संपूर्ण पोषण से भरपूर होता है जिससे बच्चे की सेहत मजबूत होती है।
7: टीकन भाभी, कई परिवार बच्चों को कोलेस्ट्रम नहीं देते कि ये साफ नहीं होता, अच्छा नहीं होता और पता नहीं क्या क्या। लेकिन मैं सभी श्रोताओं से, खास तौर पर दादियों और नानियों से कहूंगा कि ध्यान से सुनिए, ये कोलेस्ट्रम अमृत समान होता है और हर नवजात को जन्म के पहले घंटे के भीतर माँ का पहला दूध पिलाना चाहिए। ये बच्चे की तंदुरुस्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और समग्र विकास के लिए बेहद जरूरी है।
8: सही कहा आपने शशि। टिकन भाभी, मेरा आपसे एक और सवाल है। कई लोगों का मानना है कि बच्चे को सबसे पहले शहद और पानी चटाना चाहिए, उसका पेट साफ होता है, कितना सच है इस बात में?
9: बिल्कुल नहीं, नवजात शिशु का पहला टीका कोलोस्ट्रम है। उसे ना शहद, ना पानी, ना गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, किसी का भी दूध पिलाने की जरूरत नहीं है। पहले घंटे के अंदर ही माँ की छाती पर लेटा दे, बच्चा अपने आप स्तनपान कर लेगा। क्यों ना एक प्रोमो सुन ले?
10: ले ले ले ले ले।
11: ये रहा, मुन्नी को शहद चटाना है।
12: अरे माँ, शहद पानी नहीं देते, ये तो हमें 10वीं में पढ़ाया है।
11: चुप रह, बुआ बनी है, डॉक्टरनी नहीं। एक चम्मच
13: भी नुकसान कर सकता है माँ जी। जन्म के घंटे भर में माँ का दूध देना बेहद जरूरी होता है।
14: सुना आपने, जन्म के एक घंटे में माँ का गाढ़ा दूध शिशु का पहला टीका होता है। ये सिर्फ बीमारियों से ही नहीं बचाता, इसे पिलाने से माँ भी आने वाले महीनों में स्तनपान आराम से करा पाती है।
11: तो ये शहद तुम ही चख लो, मुँह मीठा कर लो।
14: हमने किया है प्रण, मिटाएंगे कुपोषण।
7: बहुत बढ़िया। कुछ महिलाओं ने पूछा है कि बच्चा गर्मियों में पैदा होगा तो उसे प्यास तो लगेगी, तो पानी देना जरूरी है?
9: मैं सभी माओं को बताना चाहती हूँ कि माँ के दूध में 80% पानी होता है, जिससे बच्चे की प्यास भी बुझती है और पोषण भी मिलता है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, बच्चे को ना ऊपर के दूध, ना पानी, ना कोई और सप्लीमेंट की जरूरत होती है। माँ को अपने पोषण का ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चे को माँ के दूध के माध्यम से सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिलता रहे। चलिए एक और गाना सुनते हैं, जिससे हमारी श्रोताओं को यह बात और अच्छे से समझ आ जाएगी।
10: भाई साहब, टाइम क्या हुआ है?
15: पता नहीं यार, मैं इस शहर में नया हूँ।

0: जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
1: पर एक घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा।
0: अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो,
2: बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो, बच्चे को केवल माँ का दूध एक घंटे के अंदर दो।
0: और हाँ, सास पति ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना।
2: इसीलिए

0: भाई वाह।
1: भाभी जी आप तो जानकारी का पिटारा हैं। एक और सवाल कि बच्चे की नाल को लेकर आज भी लोग अलग अलग भ्रम में जी रहे हैं। कुछ लोग उस पर मिट्टी या तेल लगाते हैं और कहते हैं कि इससे ये सूखेगा।
2: यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारे घरों के बुजुर्ग को आसानी से समझ ही नहीं आती। डॉक्टरों का कहना है कि नाल को सूखने देना चाहिए, उस पर तेल हल्दी या मिट्टी नहीं लगानी चाहिए, यह एक दो हफ्ते में अपने आप गिर जाती है। अगर लाल हो जाए या दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो जो बच्चे की जान को भी खतरा पैदा कर सकता है। सुना दूं एक और प्रोमो?
3: बिल्कुल भाभी जी, आज तो आप बहुत तैयारी से आई हैं।
4: कैसी हो बहन?
5: अच्छी हूँ।
4: आई आई, अरे पर जूते चप्पल यहीं उतार दीजिए।
5: बधाई हो मौसी जी, दादी बन गई आप। दावत तो मैं इसकी बुआ से लूंगी, अभी तो मेरा मुंह मीठा कराइए।
4: पहले हाथ तो धो लीजिए, इन्फेक्शन हो सकता है बच्ची को। हा? नमस्ते डॉक्टर।
5: नमस्ते। अले क्या कर रहे हैं?
6: हाय दया, इसकी नाल तो बिल्कुल सूखी है, कुछ तेल वेल लगाओ, नहलाया कि नहीं बच्ची को?
4: डॉक्टर नी साहिबा, अब आप ही समझाइए।
7: देखिए, बच्चे को 24 घंटे तक नहीं नहलाना चाहिए, इससे उसे ठंड लग सकती है। और नाल पर तेल, घी, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, इससे इन्फेक्शन हो सकता है। बस नाल को साफ और सूखा रखिए, वो सूख कर अपने आप ही गिर जाएगी।
8: शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल।
9: इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा नाल से ही होता है, डॉक्टर से पूछे बिना इस पर कुछ भी ना लगाएं।
3: भाभी जी एक सवाल ये भी है कि सर्दियों के मौसम में नवजात को गर्म कैसे रखें?
2: बच्चे को कपड़ों के कई तह में लपेटना चाहिए, इसे लेयरिंग भी कहते हैं। पहले हल्का सूती मुलायम कपड़ा, फिर एक गर्म कपड़ा और ऊपर हल्का कंबल।
1: भाभी जी अच्छा, मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या बच्चे को हीटर या चूल्हे के पास रखना चाहिए?
2: अरे बिल्कुल नहीं, इससे बच्चे की त्वचा जल सकती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सबसे अच्छा तरीका कंगारू मदर केयर है, माँ की गोद सबसे बड़ी रजाई है। बच्चे को पिता के साथ भी कंगारू केयर करवाना चाहिए, उससे बच्चे और पिता में भी एक अच्छी बॉन्डिंग होती है।
1: भाभी जी एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, नवजात शिशु को किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है?
2: सबसे बड़ा डर होता है नियोनेटल जॉन्डिस का, इससे बच्चे पीले पड़ने लगते हैं, इसे पीलिया भी कहा जाता है।
3: तो भाभी जी इसी के साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन कौन से लक्षण देखकर माँ या परिवार को सतर्क हो जाना चाहिए।
2: इसके कई लक्षण हो सकते हैं, बहुत तेज या रुक रुक कर सांस लेना। इसके कई लक्षण हो सकते हैं जैसे बहुत तेज या रुक रुक कर सांस लेना, तेज बुखार या बहुत ठंडा शरीर, दूध ना पीना या सुस्त रहना, लगातार रोना या बहुत शांत हो जाना और त्वचा पीली पड़ना। यदि इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
1: अच्छा भाभी जी एक बात बताइए, कई लोगों का ऐसा मानना है कि धूप में बच्चे को लिटा देने से पीलिया खत्म हो सकता है।
2: हल्की धूप नवजात के लिए फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ धूप में लिटाने से पीलिया ठीक नहीं होगा। अगर बच्चा ज्यादा पीला दिखे या सुस्त लगे या दूध ना पिए तो तुरंत अस्पताल जाए और डॉक्टर की सलाह ले। हल्के मामलों में माँ का दूध पिलाते रहें और सुबह की हल्की धूप में 10 से 15 मिनट तक लेटाएं। पीलिया को बढ़ने ना दें, क्योंकि गंभीर मामलों में फोटोथेरेपी या कभी कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।
3: अरे भाभी जी ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सी नई माएं टीकाकरण के बारे में जानना चाहती हैं कि कौन कौन से टीके जन्म के तुरंत बाद लगते हैं।
2: सबसे अहम है नवजात का समय पर टीकाकरण। पहले टीकों की खुराक को जन्म के समय दिया जाता है, जिसमें तपेदिक के लिए BCG, पोलियो के लिए OPV0 और 24 घंटों के भीतर हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक शामिल है ये टीके नवजात शिशु की रोग प्रतिकारक क्षमता को जीवन घातक संक्रमणों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: भाभी जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक शिशु को इतने सारे टीके लगवाए जाते हैं जिनको याद रख पाना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो एक नई माँ कैसे इन सबको याद रख पाती होगी?
2: अरे ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि प्रसव के बाद अस्पतालों में माँ या परिवार की सदस्यों का एक विशेष कार्ड MCP कार्ड, माता शिशु सुरक्षा कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड में बच्चे को कौन सा टीका कब लगेगा इसकी पूरी सूची होती है, जिससे टीकाकरण करवाना बेहद आसान हो जाता है। और एक और जरूरी बात, मैंने कई महिलाओं को टीकाकरण के बाद बच्चे को हल्का बुखार आने, टीका लगने की जगह पर हल्का दर्द या सूजन होने से घबराते हुए देखा है, लेकिन इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह सब सामान्य लक्षण है। इस डर से टीकाकरण ना टालें और ना ही इसे लेकर कोई लापरवाही करें।
1: भाभी जी, यह तो बहुत बढ़िया है क्योंकि बच्चों को टीकाकरण बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और स्वस्थ भविष्य की नींव रखता है। इसलिए हर माँ बाप को समय पर बच्चे को टीके जरूर लगवाने चाहिए। लेकिन भाभी जी, आप एक बात बताइए कि टीके लगवाने की सही उम्र क्या होती है?
2: बच्चों को जन्म से लेकर 16 साल तक अलग अलग टीके दिए जाते हैं, लेकिन सबसे जरूरी टीके पहले 2 साल में लगते हैं। जन्म के समय 6, 10 और 14 हफ्ते, फिर 9 से 12 महीने और 16 से 24 महीने में टीके दिए जाते हैं। उसके बाद 5 साल, 10 साल और 16 साल की उम्र में भी कुछ टीके लगते हैं। समय पर टीकाकरण से बच्चा कई गंभीर बीमारियों जैसे टीबी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, खसरा, डिप्थीरिया जैसे बीमारियों से बच सकता है।
3: तो दोस्तों, ये थी नवजात शिशु की सुरक्षा और सेहत की बातें, और अब हम कुछ सवाल भाभी जी से करेंगे माँ की सेहत के बारे में।
2: मैं भी सोच रही थी कि कब आप माँ के बारे में सवाल पूछेंगे। माँ स्वस्थ होगी तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। पहले 1 से 2 महीने में तो माँ को बहुत देखभाल की जरूरत होती है, और यह मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। माँ के लिए जरूरी देखभाल में सबसे पहले आता है पोषण। उसे संतुलित आहार की जरूरत होती है, जैसे दाल, चावल, दूध, सब्जी और फल खाए, और तंदुरुस्ती के लिए आयरन, कैल्शियम और विटामिन की गोलियां लें, दूध पिए और फाइबर वाले पदार्थ खाए।
3: बिल्कुल, मेरी भाभी को डॉक्टर ने बताया था कि नई माँ की देखभाल केवल पोषण तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसे पर्याप्त आराम, सफाई और भावनात्मक समर्थन की भी जरूरत होती है। माँ को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, और जब बच्चा सोए तब वो भी थोड़ा आराम करे।
2: आराम तो जरूरी है, लेकिन डिलीवरी के बाद माँ को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत रहना जरूरी है। कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता है, इसीलिए परिवार को माँ को सकारात्मक माहौल देना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए सफाई का विशेष ध्यान रखें, और किसी भी असामान्य लक्षण जैसे अत्यधिक रक्तस्राव, दर्द या सूजन होने पर डॉक्टर से सलाह लें। शरीर की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है, विशेष रूप से टांकों की सफाई और हाथ धोने की आदत। हल्की सैर और डॉक्टर की सलाह अनुसार व्यायाम शरीर को मजबूत बनाए रखता है।
1: अच्छा, इसके अलावा पति और परिवार की भूमिका भी अहम होती है। माँ पर अकेले बच्चे की जिम्मेदारी डालने के बजाय उसकी मदद करें, जिससे वह खुद को थका हुआ या अकेला महसूस ना करे। माँ को भी अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, जिससे वह मानसिक रूप से स्वस्थ और खुश रह सके। जब माँ स्वस्थ और खुश रहेगी तभी बच्चा तंदुरुस्त रहेगा।
3: बिल्कुल सही कहा आयुष तुमने, और अब हम इस एपिसोड की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल अभी बाकी हैं। कुछ महिलाओं ने यह भी पूछा था कि माँ बनने के बाद अगली गर्भावस्था से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।
2: यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित तरीके हैं, जैसे माला डी या कॉपर टी, जो अस्पताल में आसानी से मिलते हैं। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्शन और कॉन्डम भी प्रभावी विकल्प है। और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तो हर महिला और उसके पति के साथ डिस्चार्ज के पहले कई सारे विकल्प दिए जाते हैं। बेहतर होगा कि पति पत्नी मिलकर इस पर निर्णय लें।
1: लेकिन भाभी जी, कुछ लोग कहते हैं कि गर्भ निरोधक लेने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है, क्या यह सच है?
2: नहीं, यह सिर्फ एक भ्रम है। सही गर्भ निरोधक उपाय डॉक्टर की सलाह से लेने पर पूरी तरह सुरक्षित होते हैं, और माँ के शरीर को जरूरी आराम देते हैं ताकि वह दोबारा गर्भ धारण के लिए तैयार हो सके।
3: तो टीकन भाभी, माँ और बच्चे की सेहत के लिए गर्भ निरोधक उपाय जरूरी है?
2: बिल्कुल, अगर 2 गर्भ धारण के बीच कम से कम 2 से 3 साल का अंतर रखा जाए तो माँ और बच्चा दोनों ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। इससे माँ को ताकत मिलती है और बच्चे को भी अच्छा पोषण और देखभाल मिलती है। मेरे बच्चों में 4.5 साल का अंतर है। देखिए, मैं भी तंदुरुस्त हूँ और मेरे बच्चे भी।
1: तो भाभी जी, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा सेहतमंद रहे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि नवजात शिशु की और साथ ही

0: जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई, टीवी हारेगा देश जीतेगा।
1: बिल्कुल, अब मुझे समझ आया कि सेहत ही सबसे बड़ा धन है, इसे बनाए रखें, सही जानकारी लें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए सेहत सही लाभ कई के साथ। नमस्कार।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाए और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: लेकिन दोस्त अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स,

साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, आप दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं और यही उम्मीद मन में रहती है कि आपको अच्छा फसल उत्पादन मिले। और जैसा कि किसान बहन भाइयों आप जानते हैं कि आज का जो दौर है वो आधुनिक दौर है, जिस तरह से हर क्षेत्र में तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरह से आजकल खेती में भी हमारे बहुत से किसान भाई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके भरपूर पैदावार ले रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि अधिकतर हमारे देश की जनसंख्या अपने रोजगार के लिए खेती पर ही निर्भर है, इसीलिए हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और ये हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। तो ऐसे में हमें खेती से किस तरह अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है, कहाँ से उन्नतशील बीजों की किस्मों को हम खरीदें, कैसे चयन करें, अपनी खेत की मिट्टी की जांच कहाँ कराएं, कैसे कराएं और क्यों कराना ज़रूरी है, साथ ही साथ पानी का खाद का प्रबंधन कैसे करें, कीट रोग पर नियंत्रण कैसे पाएं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका हमारे किसान भाई सामना करते हैं और बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं खेती करने में। और आप मन में सोचते होंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाए, उसी वक्त हो जाए तो कितना अच्छा होगा। तो किसान मित्रों, बड़ी खुशी के साथ आपको हम बता रहे हैं कि आपकी इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार पूरे देश भर में किसान कॉल सेंटर चला रही है। खेती से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना आप कर रहे हैं तो आप तुरंत किसान कॉल सेंटर में फोन लगा करके आप अपनी समस्या का समाधान अपनी ही भाषा में फ्री में उसी वक्त पा सकते हैं। कोई भी किसान भाई जो देश के किसी भी हिस्से में रहता हो, किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान अपनी ही भाषा में फ्री में तुरंत पा सकता है। किसान कॉल सेंटर पर उपस्थित जानकार हमारे किसान भाई की समस्या का समाधान तुरंत उसी वक्त करते हैं। अगर कॉल रिसीव करने वाला व्यक्ति किसान भाई की समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं है तो वो उसी समय उस कॉल को किसी विशेषज्ञ को ट्रांसफर कर देता है। तो किसान मित्रों, आप भी अपनी खेती से जुड़ी समस्या का समाधान किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके तुरंत पा सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना किसान कॉल सेंटर की उपयोगिता के बारे में और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना, किस्सा रहेगा सती सुलोचना का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना से ये रागनी, किस्सा था सती सुलोचना का। और इस रागनी से पहले हम बात कर रहे थे किसान कॉल सेंटर की, जिस पे कि आप फोन करके अपनी कृषि संबंधी समस्या का समाधान तुरंत पा सकते हैं। तो किसान मित्रों, एक बार फिर से आपको किसान कॉल सेंटर का नंबर बता देते हैं ताकि आप अपनी समस्या का समाधान पा सकें। तो नोट कर लीजिए, किसान कॉल सेंटर का नंबर है 1800-180-1551। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार खेती में अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी बात को ध्यान में रखकर देश भर के सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का उद्देश्य किसानों को खेती में नई तकनीकों की जानकारी देना है। इन केंद्रों पर वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये केंद्र हमारे किसान भाइयों को स्वावलंबी बनाने में भी सहायता करते हैं। किसान मित्रों, कृषि विज्ञान केंद्र भारत में कृषि आधारित ऐसे विस्तार केंद्र हैं जिनका काम किसानों को खेती की नई नई जानकारियों से परिचित कराना है। आपको बता दें, आम तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जुड़े होते हैं। खेती करने वाले किसानों और कृषि से संबंधित रोजगार में शामिल लोगों के लिए ये कृषि विज्ञान केंद्र ज्ञान का भंडार है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों पर हमारे किसान भाइयों के लिए क्या सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इन सुविधाओं के बारे में बात करने से पहले आपको यहां पर सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं जगत विधूड़ी। तो आइए सुनते हैं जगत विधूड़ी से ये उपदेश।

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे जगत विधूड़ी से ये उपदेश। और इस उपदेश से पहले हम बात कर रहे थे कि जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां पर हमारे किसान मित्रों की सहायता कैसे की जाती है और क्या क्या सुविधाएं वहां पर दी जाती हैं। तो आपको बता दें कि आपके जिले में खेती करने के लिए अनुकूल जलवायु की जानकारी, मिट्टी और पानी की जांच की सुविधा आपको मिलती है। किसानों की समस्याओं का समाधान उनके खेतों पर ही करने की सुविधा दी जाती है। स्वरोजगार के लिए मुर्गी पालन, बकरी पालन, डेयरी और मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गृह विज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। और किसान मेला, गोष्ठी, सेमिनार, कृषि प्रदर्शनी, इन सब के द्वारा हमारे किसान भाइयों को कृषि विज्ञान की नवीनतम तकनीक की जानकारी देने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र हमारे किसान मित्रों को खेती करने की सही सलाह देते हैं, ग्रामीणों को व्यवसायिक ट्रेनिंग देते हैं, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए नई तकनीक विकसित करते हैं, कृषि प्रदर्शनी और सामूहिक चर्चा का आयोजन करते हैं। तो किसान मित्रों, ये कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। यदि आप खेती या ग्रामीण व्यवसाय से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं तो आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि विज्ञान केंद्र की उपयोगिता के बारे में। और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, लेकिन कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक देशभक्ति गीत। कलाकार हैं पूजा

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पूजा शर्मा से ये देशभक्ति गीत, और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: माना जाता है कि ये पृथ्वी दो हिस्सों में है, एक हिस्सा स्त्री है तो एक हिस्सा पुरुष। लेकिन कन्या भ्रूण हत्या एक कड़वी सच्चाई है जिसके कारण विभिन्न देशों में लिंगानुपात कम हुआ है। इस तरह के जो जघन्य अपराध हैं, उनके परिणाम स्वरूप बहुत से कारण हमारे सामने आए हैं। कन्या भ्रूण हत्या के पीछे मुख्य कारण जो हम अक्सर देखते हैं वो है बेटों के लिए स्नेह। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्भ में कन्या के भ्रूण को मार दिया जाता है। ये एक अपराध है। डॉक्टर्स और इस अभ्यास को करने वाले कई अन्य लोग गंभीर रूप से दंडित भी किए जाते हैं, लेकिन फिर भी भारत में सेक्स परीक्षण गैर कानूनी होने के बाद भी ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। आप इसे एक प्रथा का नाम भी दे सकते हैं। इसके पीछे कई धार्मिक और सामाजिक कारण हैं जो कन्या भ्रूण हत्या को जन्म देते हैं, जैसे कि माता पिता को बेटी की शादी करवानी है, उसके लिए दहेज इकट्ठा करना है, उसमें एक बड़ी राशि का खर्च होगा। पुरुष घर चलाता है, घर के बाकी सदस्यों को पालता है पोसता है, और एक बेटा ही आगे जाके ये जिम्मेदारी पूरी कर सकता है। ऐसी मान्यता हमारे भारत के समाज में पाई जाती है। लोगों का मानना है कि केवल लड़के पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार की देखभाल कर सकते हैं, जबकि लड़कियां केवल उपभोग कर सकती हैं और एक दिन शादी करके चली जाएंगी। कुछ लोगों के लिए एक बच्ची की तुलना में एक लड़का होना गर्व और सम्मान की बात भी है। किसी को बेटा होता है तो माता पिता का हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है। गरीबी और अशिक्षा भी मुख्य कारण माने गए हैं। दिमाग में ये बात डाल दी जाती है कि बालिका जो है वो परिवार पर बोझ है। दहेज की प्रथा जो चलती आ रही है वो भी एक बड़ा कारण है, लेकिन दहेज की ये कुप्रथा कई बार उनकी लाडों को खा जाती है। समाज में कई ऐसे परिवार हैं जिनको अपने परिवार में एक लड़का चाहिए ही होता है। उस परिवार का एक बेहतर भविष्य वो सिर्फ लड़के में ही देखते हैं। अशिक्षा, असुरक्षा, गरीबी, ये सब इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। ये तो कुछ ऐसी सामाजिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई, लेकिन इन्हीं बातों को हम अब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे एक छोटी सी नाटिका के तौर पर। तो प्रस्तुत है एक छोटी सी नाटिका जिसमें स्थिति कुछ ऐसी ही है। एक परिवार है जिसमें पहले से ही बहू को दो बेटियां हैं और अब बेटे का बेसब्री से इंतजार है। घर के सभी सदस्य मानते हैं कि बेटे का वंश नाम तभी चलेगा जब उसे पुत्र होगा। पुत्र की चाह में क्या कुछ करता है ये परिवार, आइए इस नाटक के द्वारा समझते हैं और समाज की इस कड़वी सच्चाई से निपटने का रास्ता ढूंढते हैं। इस नाटिका में कुछ पात्र हैं। उर्मिला एक ऐसी स्त्री जिसे पहले से ही दो पुत्री हैं, उसका पति अरुण, उसकी सास जानकी, उसके ससुर महेश्वर जी और साथ ही उसकी सास जानकी की सहेली सुषमा। इन्हीं सब के बीच एक सूत्रधार है जो सामाजिक मान्यताओं, सीमाओं और कुरीतियों को सामने रखने की कोशिश करता है। तो आइए शुरू करते हैं ये छोटी सी नाटिका, बेटियां हैं तो वंश है।
1: अरे बहू जल्दी कर, लेट हो जाएंगे वरना।
0: आई माँ जी। चलिए चलिए मैं तैयार हूँ।
1: चल तोहफा रख लिया?
0: जी माँ जी रख लिया।
1: सुषमा बहन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा आज, बड़ी मन्नतों के बाद पोता जो हुआ है। अब तू भी जल्दी से खुशखबरी दे दे, सुन रही है ना?
0: जी जी माँ जी।
1: देख तो यहाँ तक आवाज आ रही है गाने की, हम भी छत पे बड़ा वाला स्पीकर लगाएंगे जब तेरा लल्ला होगा, पूरे मोहल्ले को पता चलना चाहिए। अच्छा चल अब ये तोहफा मुझे दे दे। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, आज तो पूरे मोहल्ले में शोर उठा रखा है।
2: बहन आज भगवान ने अरसों बाद खुशियाँ दी है, नाच गाना तो होगा ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये लो पोते के लिए।
2: अरे आप आ गए, इतना काफी था, इस तोहफे की क्या जरूरत थी?
1: ऐसे कैसे, पोता आया है, खाली हाथ थोड़े ना आ सकती हूँ।
2: अच्छा अच्छा चलो चलो अंदर चलो, अब सारी बातें क्या यही कर लोगी?
1: बहू मैंने तो लल्ले का नाम भी सोच रखा है, अब इंतजार नहीं होता। सुषमा बहन को देखने के बाद तो पोते को गोद में उठाने की ख्वाहिश और बढ़ गई है।
0: अच्छा चलो माँ जी, मुझे थोड़ी थकान सी लग रही है, अब जल्दी घर चले।
3: अरे अरे क्या हो गया तुम्हें?
1: जा ले जा, इसे अंदर ले जा।
4: आ गई तुम लोग, दे आई मुबारकबाद।
1: हाँ जी, बहुत थकान हो गई है।
4: बहू को क्या हो गया?
1: थकान की वजह से कमजोरी लग रही है। मुझे तो लगता है खुशखबरी का वक्त आ गया है।
4: लगता बहुत है तुम्हें, चलो सोने चलो, रात बहुत हो गई है।
1: हाँ आपको क्या पता, चलो सोने।
3: उम्मी क्या तबीयत खराब हो गई थी, क्या हुआ तुम्हें?
5: जी कुछ नहीं, बस अभी वॉशरूम से आई।
3: उर्मी आखिर बात क्या है, बहुत खुश नजर आ रही हो।
2: जी खुशखबरी है।
3: क्या हमारे घर में फिर से नन्ना मेहमान आने वाला है?
1: अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रखा है?
3: अरे मम्मी कुछ नहीं है।
0: अगले दिन अरुण ने जानकी को बता ही दिया कि नन्ना मेहमान आने वाला है। ये सुनकर जानकी तो खुशी से झूम ही उठी। पूरे घर में खुशी का माहौल है, लेकिन वहीं किसी के दिल में एक असमंजस है। जी सुनिए, आपसे मुझे एक बात करनी थी।
3: हाँ हाँ, बेझिझक बोलो उर्मी।
0: आपको याद है कि हम कुछ दिन पहले सुषमा आंटी के घर गए थे जब उनके पोता हुआ था? जब हम वहाँ गए थे ना, तो माँ पोते को लेकर बहुत एक्साइटेड थी।
3: तो क्या हो गया?
0: आप समझ नहीं रहे हैं, अगर बेटी हो गई तो।
3: अरे उर्मी तुम चिंता ना करो, अम्मा का तो काम है बात बात पर रट लगाए रखना। बेटा या बेटी क्या फर्क पड़ता है, तुम घबराओ मत।
0: कभी कभी घबराहट तो हो ही जाती है ना।
3: तुम अभी अपने खान पान और सेहत पर ध्यान दो, ज्यादा इधर उधर की बात सोचने की जरूरत नहीं है।
6: जी कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिपोर्ट तो सब ठीक ही कह रही है और बच्चा भी स्वस्थ है। आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें और दवाई टाइम पर लेते रहें। जरूरत पड़ी तो आप फिर से चेकअप करवाने आ सकते हैं। और वैसे आपको कुछ और कमजोरी लग रही है अपने शरीर में?
0: नहीं डॉक्टर, अभी तो ठीक है।
1: अरे डॉक्टर साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप ये तो बता दीजिए कि बेटा ही होने वाला है ना।
6: अरे आप अभी से ये सब सोच रही हैं कि बेटा होगा? आपको पता है ना ये सब गैर कानूनी, हमारे इधर नहीं होता ऐसा। जाइए आप, अपनी बहू का ध्यान रखिए अच्छे से पहले। नेक्स्ट।
1: देखा बहू, डॉक्टर अगर हमें बता देता तो क्या बिगड़ जाता है इसका।
0: मम्मी जी ये तो सब गैर कानूनी है ना, और फिर इसके लिए उन्हें जेल हो जाती तो।
1: अरे बाकी डॉक्टर बता देते हैं, मैंने कितनों को देखा है, पहले ही जान लेते हैं। खैर छोड़, मुझे तो पूरा विश्वास है बेटा ही होगा।
7: हाँ जानकी बहन, आज कैसे याद किया?

0: अरे खुशखबरी सुनानी थी ना, इसीलिए याद किया। अब हमारे घर भी लल्ला आने वाला है।
1: क्या बात कर रही हो?
0: हाँ हाँ सही कह रही हूँ, मेरी बहू पेट से है।
1: अरे मुबारकबाद, अरे बधाइयाँ बधाइयाँ, इस बात पे तो जश्न होना चाहिए।
0: अरे बिल्कुल होगा जश्न, एक बार बस मेरे घर भी पोता आ जाए।
1: अरे तू फिकर ना कर, एक बार जाके मंगल बाजार वाले बाबा को दिखाया। पता है तुझे, मैंने भी अपनी बहू को वहीं दिखाया था और देख, उनके आशीर्वाद से पोता हो गया मुझे।
0: अच्छा फिर तो मैं आज ही लेकर जाऊंगी।
1: अरे आज ही चली जा।
0: हाँ हाँ आज ही जाऊंगी। चल अब तू फोन रख, बाद में बात करती हूँ तुझसे। बहू, ओ बहू।
2: हाँ माँ जी।
0: मेरी अभी सुषमा से बात हुई है, उसने अपने बहू को मंगल बाजार वाले बाबा है ना, उनको दिखाया था। उसकी भी दो दो पोतियाँ थी, उन बाबा की कृपा से उसको पोता हो गया। शाम को हम भी वहीं जाएंगे, तैयार है ना?
3: पर माँ जी इन सब की क्या जरूरत है, ये तो एक प्राकृतिक क्रिया है ना माँ जी, बाबा वगैरह तो।
0: पता था, गवारी है तू, तेरे घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया। सुषमा बोल रही थी बहुत प्रतापी बाबा हैं वो, और वैसे भी मैंने भी उन बाबा के काफी चर्चे सुन रखे हैं। अब लड़का चाहिए तो जाने में क्या बुराई है?
3: पर माँ जी।
0: अरे परवर कुछ नहीं, बस तैयार है ना?
3: ठीक है माँ जी, चल दूंगी। सुनिए, माँ जी किसी बाबा के पास जाने के लिए कह रही थी, वो तो बस यही सोचकर चल रही हैं कि लड़का ही होगा। मुझे तो अब डर लगने लगा है, लड़की हो गई तो पता नहीं माँ जी क्या कहेंगी, क्या करेंगी वो।
4: देखो इस चीज के लिए मैं मम्मी को समझाने की कोशिश करूंगा, पहले से दो बेटियां हैं ना, इसलिए एक बेटा हो जाए वो बस यही सोचती रहती है ना।
3: जी लेकिन आपको उन्हें थोड़ा समझाना चाहिए ना, थोड़ा समझाने की कोशिश करो कि ये सब बाबा बाबा के पास जाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज मना करवा दो।
4: उर्मी, अरे बाबा के पास ही तो जाना है, चले जाओ ना, उनका भी मन रह जाएगा। खैर अब मैं बोलूंगा तो वो कुछ और ही सोचने लग जाएंगी, इसलिए कोई बात नहीं, चले जाओ ना।
3: आप कह रहे हैं तो एक बार चली जाती हूँ, लेकिन देखो माँ जी को समझा लो, मैं बार बार ऐसे नहीं करूंगी।

0: बाबा जी प्रणाम। ये मेरी बहू पेट से है, इसको पहले से ही दो बेटी हो रखी है। आप थोड़ा इसे आशीर्वाद दे देना कि इस बार बेटा हो जाए।
1: का नाम है बेटी तेरा?
2: जी उर्मिला।
1: अच्छा तो एक काम कर बेटी, रोज सुबह जल्दी उठकर पहले तो गणेश भगवान की पूजा कर बेटा। और दूसरी बात यह है, ये बाबा जी का चमत्कारी प्रसाद, अब खाना कैसे इस बात को ध्यान से सुन ले। सूरज की पहली किरण से पहले यानी कि जल्दी उठ जाओ बिस्तर से, और बछड़े वाली गाय का दूध में ये प्रसाद मिलाकर पी ले। और चिंता मत कर, बाबा जी के प्रसाद से लड़का ही होगा, जा खुश रहे।
0: बाबा जी आप तो बस अपना आशीर्वाद दे दो इसको कि पोता हो जाए।
1: जानकी अब तू फिकर ना कर, जानकी जा जाके तैयारियां शुरू कर, चिंता मत कर पोता ही होगा।
3: उर्मिला के दिन चढ़ चुके हैं। उसकी सास जब से बाबा के पास से दवाई दिला के लाई है तब से बड़ी आश्वस्त लग रही है, उसे बाबा पे पूरा भरोसा है। धीरे धीरे दिन बीत रहे हैं। जहां जानकी अपने आने वाले पोते का बेसब्री से इंतजार कर रही है, वहीं उर्मिला की मनस्थिति कुछ अजीब सी होती जा रही है। उर्मिला पढ़ी लिखी है और जानती है कि ये सब ढकोसला है। कोई बाबा ये नहीं तय कर सकता कि गर्भ में बेटा होगा या बेटी। उसे ये चिंता है कि अगर लड़की हो गई तो जानकी कैसी प्रतिक्रिया देगी, क्या वो उस बच्चे को अपना पाएगी, उसे भविष्य में दादी का प्यार दे पाएगी, क्या मुझे सम्मान मिलेगा। इसी सोच में दिन बीतते गए और जानकी की तैयारियां चलती रहीं। जानकी ने तो 150 के करीब सूट भी खरीद लिए क्योंकि वो सभी रिश्तेदारों को बुलाने वाली थी। एक बहुत बड़ा आयोजन करने की सलाह बना चुकी थी जानकी। आने वाले छोटे से मेहमान के लिए छोटी सी चांदी की कटोरी प्याला भी संदूक में खरीद कर रख लिया था उसने। बस अब कोई दिन बीत रहा था, इंतजार करने की हद अब पार हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था। आधी रात उर्मिला की अचानक बेचैनी बढ़ गई, दर्द हो रहा था। उर्मिला को एहसास हुआ कि डॉक्टर के पास जाने का वक्त हो गया है। उसने दर्द भरी आवाज में अरुण को उठाया। अरुण देखते ही उसकी हालत समझ गया। आनंद फानंद में उसने जानकी को उठाया। सब हॉस्पिटल की तरफ भागे। रास्ते में उर्मिला दर्द से कर्रा रही थी लेकिन जानकी की खुशी कुछ और ही कह रही थी। वो झूम रही थी अपनी खुशी में। उर्मिला का दर्द दरकिनार करते हुए वो बस आने वाले पोते की खुशी में बड़बड़ाए जा रही थी। आखिरकार लेबर रूम का दरवाजा बंद हुआ और फिर
0: अरे सुन सुन अरुण, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, मेरा पोता आ गया।
4: हाँ माँ सुन लिया, बच्चे की आवाज मैंने सुन ली, अब चल डॉक्टर के पास चलते।
5: पेशेंट के रिश्तेदार कौन है?
4: डॉक्टर साहब मैं अरुण और मेरी माताजी जानकी।
5: बधाई हो, डिलीवरी सक्सेसफुल हुई है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है।
0: वो सब तो ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए मेरा पोता कैसा है, कहाँ है वो?
5: माँ जी रुकिए, पोता नहीं पोती आई है आपके घर, लक्ष्मी आई है।
0: क्या लड़की है, ऐसा कैसे हो सकता है?
5: क्या मतलब आपका?
4: जी डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, पहले आप मुझे बताइए उर्मी कैसी है और बेटी कैसी है?
5: माँ और बच्चे दोनों एकदम स्वस्थ हैं और ठीक है।
0: मुझे तो बस उर्मी की चिंता है, यहाँ तीसरी लड़की आ गई है, उसके बारे में सोचा है कभी?
4: माँ शांत हो जाइए, हॉस्पिटल है। अच्छा अब चल यहाँ से।
0: चल यहाँ से, तीन बार से आस लगा के रखी थी पोता आएगा, ये सब उर्मी की गलती है, अपनी फूटी किस्मत हमारे पल्ले चढ़ा दी, शुरू से ही मनुष्य है वो। कितना कुछ किया, बाबा को जाके दिखाया, प्रसाद खिलाया, लड़का तो होना ही चाहिए था, जरूर इसने कुछ नहीं किया होगा।
4: माँ शांत हो जा, और तू एक बात बता, बेटा बेटी में क्या फर्क है? कैसी पुरानी समय की वाली बात कर रही है तू, दकिया न्यूसी वाली बात। सबसे पहले हमारा और तेरा फर्ज ये बनता है कि उर्मी से जाके मिले, उस बेटी की हालचाल जाने। अब चल ना माँ, उर्मी के पास चलते।
0: मैं नहीं जा रही, उर्मी का हालचाल लेना है, मैं नहीं जा रही। जा तू ही ले उर्मी का हालचाल, मुझे अकेला छोड़ दे।
4: ठीक है तुम बैठो, मैं उर्मी से मिल के आता हूँ।
3: कलेश तो होना ही था, आज थी पोते की, और जानकी के हाथ आई एक नन्ही सी प्यारी सी पोती। लेकिन जानकी उस चेहरे में एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी बच्ची को नहीं बल्कि एक काले भविष्य को देख रही थी। उसे लग रहा था कि अरुण यानी कि उसका बेटा वंशहीन रह जाएगा। पोती के आने की खुशी मनाने की बजाय जानकी ने मातम का माहौल बना दिया। लेकिन इन्हीं सबके बीच अगले दिन उर्मिला को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। पोती को लेकर उर्मिला घर पहुंची। सब कुछ बदल गया था। जैसा उसको डर था उसका सम्मान घर में अब वो नहीं रहा जो था। जानकी दो पोतियों को पहले ही अपनाकर अपना साहस दिखा चुकी थी लेकिन तीसरी पोती को अपनाने का साहस वो नहीं दिखा पाई। उर्मिला के लिए ये बहुत बड़ी चोट थी। अब रोज घर में सिर्फ और सिर्फ कलेश होता था। छोटी छोटी बातों पर जानकी को धमकाना डांटना उसे गालियां देना उसके साथ बुरा बर्ताव करना जानकी की जैसी आदत से बन गई थी। जानकी का बस चलता तो उसे घर से ही निकाल देती। बच्चियों के प्रति जो उसका प्रेम था वो भी कम हो गया। धीरे धीरे बदल ही गया। अब बच्चियों के लिए भी उसका प्रेम कठोरता में बदल गया। उसकी कठोर कर्कश आवाज अब बच्चों को भी डराने लगी थी। बात जब तक खुद पर थी उर्मिला सह रही थी लेकिन अब बात बच्चों पर आ गई थी। बच्चियों को यूं रोते देख दादी के प्यार के लिए तरसते देख उर्मिला का मन कटु होता चला गया। उर्मिला ने कई बार जानकी से बात करने की कोशिश की लेकिन जानकी ने हर बार उसे धुतकार दिया। उसके सम्मान तो घट ही गया था साथ ही साथ घर एक कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया था। उर्मिला को लगने लगा था कि अब इस घर में उसकी जगह नहीं रही उसकी बच्चियों के लिए जगह नहीं रही। जानकी दबी आवाज में अरुण की दूसरी शादी की भी बात करने लगी थी। ये सब सुनकर अब उर्मिला की सहन शक्ति जवाब दे गई और उसने मन बना लिया कि वो उसके विरुद्ध आवाज उठाएगी। और यूं ही मन बनाते बनाते एक दिन उसने कदम उठा ही लिया।
2: जानकी जी है क्या?
0: अरे रुको आ रही हूँ।
2: नमस्ते माँ जी, क्या आप ही जानकी जी हैं?
0: हाँ जी मैं ही जानकी हूँ, बोलो क्या काम है?
2: जी मैं आशा वर्कर हूँ आरती, जनगणना के लिए आई थी, याद आया?
0: अरे हाँ हाँ, तभी तो देखी देखी सी लग रही है, बताओ क्या जानकारी लेने आई हो आप?
2: माँ जी मैं आपसे बात करने आई थी, कुछ बहुत जरूरी बात है।
0: हाँ हाँ बोलो।
2: माँ जी वैसे तो मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ लेकिन बड़े पते की बात बताने आई हूँ। आप मुझे गलत मत समझिएगा पर परसों उर्मिला आई थी, वो काफी परेशान थी।
0: उर्मिला आई थी?
2: जी माँ जी, और उन्होंने हमसे कुछ बातें भी की।
0: अच्छा तो आजकल बाहर जाके शिकायत करने लगी है?
2: शिकायत नहीं माँ जी, समस्या लेकर आई थी।
0: समस्या तो वो बन गई है हमारे लिए, भर दिए तुम्हारे भी कान। क्या कह रही थी वो? एक तो हमारे वंश का नाश कर दिया, ऊपर से बाहर जाकर चुगली करती है। अगर पहले ही पता होता इसके पेट में लड़की है तो इस दुनिया में आने से पहले ही गिरवा देती।
2: माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? एक औरत होकर औरत जात से इतनी नफरत, एक छोटी सी बच्ची को मरवाने के बारे में सोच लिया? मानवीय भावनाएं आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आपको ये समझाना तो व्यर्थ है, चलिए आपसे कानूनी भाषा में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप जो सोच रही हैं और जो आप कर रही हैं ये दोनों ही घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है और इसके लिए जो कानून है ना माँ जी वो बहुत सख्त हैं।
0: अरे तो मैंने कौन सा इसे फांसी पर चढ़ा दिया?
2: माँ जी शारीरिक ही नहीं, अगर आप किसी को मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करती हैं तो इसके लिए भी आप गुनहगार बनती हैं।
0: अरे अगर इतनी परेशान है तो चली जाए अपनी बेटियों को लेकर, मैं भी अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी, कम से कम पोते का मुंह देखने को तो मिलेगा।
2: माँ जी आप उर्मिला और उसकी बच्चियों से किसी भी प्रकार का हक छीन नहीं सकती, इस बात के लिए कोशिश भी की तो आपको जेल हो सकती है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये सब अपराध है, लड़का लड़की सब एक समान है, आज जमाना बदल गया है माँ जी।
6: अले अले चुप हो जा मैं बच्चा, मेरी मुन्नी चुप हो जा, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे मेरे लिए तो तू राजकुमारी है, मेरे दिल की रानी,
7: मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी, बहुत पढ़ाऊंगी, बहुत लिखाऊंगी, सारी दुनिया से लड़ जाऊंगी मैं तेरे लिए। तू चिंता मत कर, तेरी माँ जिंदा है और हमेशा तेरे साथ रहेगी, बहुत प्यार करेगी तुझे। तुम्हारी दादी कहती है कि उनका वंश खत्म हो गया, लेकिन नहीं, मेरा वंश तुमसे चलेगा। मेरी बेटी है तो मेरा वंश है।
8: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Sono Sharda. 94 स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूँ डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे, आईज पे, कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।

0: के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी यह है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरुशादा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
1: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
2: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
1: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
3: हाँ माँ जी।
4: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
1: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत उमंग कार्यक्रम में।
3: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी कलावती सोनी जी ने। और वो लिखते हैं,
3: सत्य बोलने से मन शांत रहता है और परेशानियां दूर होने लगती हैं। सत्य बोलने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर विचार के लिए। किसी ने सत्य ही कहा है, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता।
3: क्या बात, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और आइए सुनते हैं अब संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम जो इस प्रकार से हैं।
2: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
3: ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे।
2: छत्तीसगढ़ से योगिता टंडन। और
3: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से भावना, बिंदु, गोलू और सूरज कुमार ढाकसे जी।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। ये भी जाने श्रृंखला में आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार के बारे में जिसे इतिहास में शायद सबसे अधिक लोकप्रियता मिली। बड़े तो क्या, बच्चे भी इसके दीवाने हैं। तो अजीत जी जरा अंदाजा तो लगाइए किसकी बात कर रही हूँ मैं।
3: विमलेश जी, मैं सोचता हूँ कि दुनिया में वैसे तो सभी आविष्कार अपनी अपनी जगह पर बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय आविष्कार है मोबाइल फोन।
2: बिल्कुल सही।
3: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल फोन का आविष्कार किस देश में हुआ?
2: वो देश है अमेरिका। 1973 में मोटोरोला कंपनी के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फोन बनाया और इसका पेटेंट लेकर इतिहास में दर्ज कर दिया।
3: इसे नाम दिया गया मोटोरोला डायना TAC 8000X।
2: जी, अमेरिका के मार्टिन कूपर ने मोबाइल फोन का आविष्कार किया था।
3: श्रोताओं, अब आपको बताते हैं मोबाइल फोन द्वारा की गई पहली कॉल का किस्सा जो इस प्रकार से है।
2: बात 3 अप्रैल 1973 की है। मार्टिन कूपर ने पहली बार मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रतिद्वंदी जोएल एंगल को फोन किया और कहा,
3: हेलो, कैन यू हियर मी।
2: श्रोताओं, मार्टिन के प्रतिद्वंदी जोएल को ये फोन सुनकर कोई जलन नहीं हुई।
3: वाह, कितनी अच्छी बात है। और जोएल ने कहा, माय फ्रेंड, यू हैव क्रिएटेड ग्रेट हिस्ट्री, ह्यूमन रेस विल रिमेम्बर यू विद थैंक्स, कांग्रेचुलेशंस।
2: मित्रों, कितनी बड़ी सीख मिलती है इस घटना से। यदि कुछ अच्छा है तो चाहे किसी ने भी किया है, हमें बिना किसी जलन के उदारता से प्रशंसा करनी चाहिए।
3: वाह, क्या बात है। यदि कुछ अच्छा है तो चाहे किसी ने भी किया है, हमें क्या करना चाहिए?
2: हमें प्रशंसा करनी चाहिए।
3: श्रोताओं, उन दिनों मोबाइल फोन द्वारा फोन किया जाना एक महान और अद्भुत चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए तो, जब पूरी दुनिया लैंडलाइन टेलीफोन्स पर निर्भर थी, उस समय एक ऐसा उपकरण तैयार करना
2: जिसे आप अपनी जेब में रख सकें, कभी भी कहीं भी कॉल कर सकें।
3: वाकई ये अविश्वसनीय था, अद्भुत था। लेकिन विमलेश जी, मोबाइल फोन के आविष्कार की मुख्य वजह क्या थी?
2: अजीत जी, मोबाइल फोन का आविष्कार करने का मुख्य उद्देश्य था लोगों को एक जगह से बंधे रहने की बाध्यता या मजबूरी से मुक्त करना, और कुछ हद तक सैनिक सुरक्षा भी।
3: श्रोताओं, लैंडलाइन फोन के कारण उस समय टेलीफोन सिर्फ एक जगह पर सीमित था।
2: जी,
3: लोग यात्रा करते थे तो संपर्क नहीं कर सकते थे।
2: बिल्कुल।
3: इसी समस्या को हल करने के लिए एक ऐसा उपकरण बनाने का विचार आया जो वायरलेस हो और पोर्टेबल हो।
2: बिल्कुल। श्रोताओं, आप ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि शुरुआत में मोबाइल फोन कैसा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1973 में बनाए गए पहले मोबाइल फोन का वजन लगभग 1.5 यानी 1.5 किलोग्राम था। ये करीब 10 इंच लंबा और इसे चार्ज करने में कम से कम 10 घंटे लगते थे, जबकि बात करने का समय सिर्फ 30 मिनट था।
3: आशोताओं, एक बात और आपको बता दें, इसकी कीमत भी उन दिनों बहुत ज्यादा थी, लगभग $3,995 यानी लगभग 3.5 लाख रुपए। और ये फोन सिर्फ अमीर और बड़े व्यापारियों के लिए एक विलास की वस्तु था।
2: तो श्रोताओ, अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो प्रश्न है,
2: शुरुआत में मोबाइल का वजन कितना था, इसकी लंबाई कितनी थी और इसे चार्ज करने में कितना समय लगता था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: शुरुआत में मोबाइल फोन का वजन कितना था, इसकी लंबाई कितनी थी और इसे चार्ज करने में कितना समय लगता था।
2: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं।
3: हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: और अब सुनते हैं आज का कार्यक्रम, शीर्षक है जगदीश चंद्र बसु।
3: श्रोताओ, जगदीश चंद्र बसु, इस नाम को भला कौन नहीं जानता। वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक या जीव विज्ञानी हैं जिन्होंने शोध करके ये सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं, पीड़ा और आनंद की अनुभूति वैसी ही होती है जैसी मनुष्यों में।
2: जी, लेकिन कैसे किया उन्होंने शोध, आइए जानते हैं।
4: संध्या का समय था। एक बालक अपने बगीचे में गेंद से खेल रहा था। गेंद उछलकर लताओं में अटक गई। बालक एक लकड़ी से उसे गिराने लगा। तभी उसकी मां ने कहा, बेटा, पौधे सो गए हैं, उन्हें मत जगाओ, गेंद सवेरे निकाल लेना। मां की बात सुनकर बालक सोचने लगा कि अगर पौधे हमारी तरह सोते जागते हैं तो उनमें भी हमारी तरह प्राण होते होंगे। पौधों को पानी देते समय वो सोचता, क्या पौधे पानी और भोजन पाकर प्रसन्न होते हैं? क्या आकाश में उमड़ते बादलों को देखकर उनका मन भी आनंद से नाच उठता है? फूलों को तोड़ लेने पर या आंधी में डालियों के टूटने पर पेड़ पौधों को भी दुख होता होगा।

यही बालक जब बड़ा हुआ तब उसने पेड़ पौधों के बारे में कई विचित्र बातों का पता लगाया। उसने खोज की कि पेड़ पौधों के जीवन की बहुत सी बातें हमारे जीवन की ही तरह होती हैं। इस नई खोज से संसार आश्चर्यचकित रह गया।

जगदीश चंद्र का जन्म 30 नवंबर 1858 में ढाका जिले के मेमन सिंह नामक स्थान पर हुआ था। बालक जगदीश पहले अपने गांव की पाठशाला में पढ़ने गया। पाठशाला में किसानों और मछुओं के बेटे उसके साथ ही थे। किसानों के बालक खेतीबाड़ी और पौधों के बारे में बातें करते रहते थे। इससे बचपन में ही जगदीश चंद्र की रुचि पेड़ पौधों में हो गई। तेरह वर्ष की उम्र में जगदीश चंद्र को कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहां की पढ़ाई समाप्त कर वे इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त की। इंग्लैंड में उन्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ कार्य करने का अवसर मिला, जिससे नई नई खोज करने की उनकी इच्छा और भी तीव्र हो।

पढ़ाई समाप्त करके जगदीश चंद्र बसु स्वदेश लौट आए। यहां आते ही कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। जगदीश चंद्र को अंग्रेज अध्यापकों से बहुत कम वेतन दिया गया। इससे उनके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने कहा, या तो मुझे पूरा वेतन दिया जाए या मैं बिना वेतन के ही काम करूंगा। 3 वर्ष तक वे बिना वेतन कार्य करते रहे। पैसे की तंगी के कारण उनका जीवन काफी कठिनाई से बीत रहा था, पर वे झुके नहीं। अंत में कॉलेज के अधिकारियों को ही झुकना पड़ा। अंग्रेज अध्यापकों के वेतन के बराबर पूरे 3 वर्ष का वेतन उन्हें सम्मान सहित दिया गया। विज्ञान ही बसु का जीवन था। ज्ञान प्राप्त करने की उनकी इच्छा इतनी तीव्र थी कि वे इसके लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने को तैयार थे। उन्होंने अपना लक्ष्य निश्चित कर लिया और फिर सदा उसकी ओर बढ़ते गए। धैर्य, साहस और लगन के साथ काम करना ही उनकी सफलता की कुंजी थी।

जगदीश चंद्र बसु की पहली वैज्ञानिक खोज बेतार के तार से संकेत भेजने के संबंध में थी। उन्होंने अपने बनाए यंत्रों द्वारा रेडियो तरंगों को ईंटों की मोटी दीवार से गुजारकर दिखाया। ये तरंगें 75 फुट की दूरी तक गईं, जिससे वहां रखी घंटी बज उठी। इस प्रयोग का प्रदर्शन उन्होंने सन 1895 में बंगाल के गवर्नर के सामने किया। धातुओं के विषय में जगदीश चंद्र ने कई खोजें की। उन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया कि निर्जीव धातु भी परिश्रम करने से थक जाती है।

जगदीश चंद्र की सबसे अद्भुत खोज पेड़ पौधों के विषय में है। ये तो तुम जानते ही हो कि बचपन से ही वे पेड़ पौधों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते थे। उन्होंने पता लगाया कि पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, वे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, परंतु लोगों ने उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया। उस समय ऐसे यंत्र नहीं थे जिनसे पेड़ पौधों की भीतरी क्रियाओं को दिखाया जा सके। उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए स्वयं कुछ यंत्र बनाए। उनमें से एक यंत्र था फस्कोग्राफ, दूसरा यंत्र था रेजोनेंस रिकॉर्डर। फस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र था, जबकि रेजोनेंस रिकॉर्डर से यह ज्ञात हो जाता था कि चोट लगने पर और मरते समय पौधे भी कांपने लगते हैं। डॉक्टर बसु ने पौधों के कष्ट और उनकी मृत्यु के दृश्य पर्दे पर दिखाए। उन्होंने जीवित पौधे में विद्युत की एक हल्की सी लहर दौड़ाई। पर्दे पर पौधे का कांपना और तड़पना साफ साफ दिखाई देने लगा। धीरे धीरे पौधा निर्जीव हो गया। ये देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आश्चर्यजनक खोजों, आविष्कारों तथा प्रयोगों को देखकर यूरोप के लोग उन्हें पूर्व का जादूगर कहने लगे। तुम स्वयं भी प्रयोग द्वारा कुछ बातें जान सकते हो, जैसे छुई मुई का पौधा हाथ लगाते ही मुरझाने लगता है और फिर थोड़ी देर में पहले जैसा हो जाता है। वनस्पति जगत की इन खोजों के कारण डॉक्टर बसु सारे विश्व में प्रसिद्ध हो गए। लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया।

रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपनी महत्वपूर्ण खोजों का प्रदर्शन करने तथा व्याख्यान देने के लिए कई बार इंग्लैंड बुलाया। पेरिस में डॉक्टर बसु का भाषण सुनने वालों में स्वामी विवेकानंद भी थे। जब हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा तो उन्होंने डॉक्टर बसु को गले से लगा लिया और भारत का वीर पुत्र कहकर उनकी प्रशंसा की।

0: डॉक्टर बसु का विचार था कि विज्ञान को सरल भाषा में लिखा जाए। उन्होंने कई बार जन साधारण को बांग्ला भाषा में अपनी खोजों के बारे में बताया। बच्चों की सभाओं में भी उन्होंने भाषण दिए और बड़े रोचक ढंग से उन्हें विज्ञान का परिचय दिया। बीच बीच में वे हंसी मजाक भी करते जाते, जिससे बच्चों का मनोरंजन भी हो और वे कुछ सीख भी लें। पेड़ पौधों के विषय में डॉक्टर बसु की इन खोजों से जर्मन वैज्ञानिक इतने प्रभावित हुए कि वे उन्हें एक पूरा विश्वविद्यालय सौंपने को तैयार हो गए। परंतु डॉक्टर बसु ने उनसे कहा, मेरा कार्यक्षेत्र भारत ही रहेगा और मैं अपने देश के उसी महाविद्यालय में काम करता रहूंगा जिसमें मैंने उस समय काम करना शुरू किया था जब मुझे कोई जानता भी नहीं था। ये था डॉक्टर बसु का देश प्रेम। प्रेसिडेंसी कॉलेज से अवकाश प्राप्त करने पर उन्होंने बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भारतवर्ष में ऐसी अनेक विज्ञान संस्थाएं खुल जाएं जिससे हमारे विद्यार्थियों को विदेश जाने की जरूरत ना पड़े। सन 1937 में इस महान वैज्ञानिक का देहांत हो गया। डॉक्टर बसु की महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के लिए संसार उन्हें सदा याद रखेगा।
1: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जगदीश चंद्र बोस। आशा है कि आपको इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी रोचक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी।
2: और अब सुनते हैं एक रोचक सामान्य मानसिक गणित पर आधारित कार्यक्रम, कितना हल्का कितना भारी।
3: नमस्ते बच्चों। नमस्ते नमस्ते।
4: अरे भाई, आज तो तुम लोग बहुत जल्दी आ गए।
5: कहानी भी तो सुननी है। हाँ। पर भैया, आज दीदी क्यों नहीं आई?
4: हाँ, ये बात है।
6: आनंद, लो मैं भी आ गई। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो बच्चों?
4: बढ़िया हो ना?
6: तो आनंद, आज तुमने बच्चों को बताया कि हम इन्हें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं?
4: बस वही तो बताने वाला था। बच्चों, आज हम सुनाएंगे एक घोड़े की कहानी।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है ना।
4: हाँ।
5: मैं एक बार घोड़े पे बैठा भी था।
6: अच्छा? अच्छा, बस एक ऐसा ही घोड़ा था जैजू और मन्नू के पास।
7: जैजू मन्नू कौन थे?
4: बच्चों, जैजू और मन्नू बिल्कुल तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे थे। और उनके पास था एक घोड़ा।
5: घोड़ा बहुत तेज दौड़ता।
6: हाँ,
5: था।
6: बहुत तेज।
4: अरे वो तो बहुत ही ताकतवर भी था और बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा घोड़ा था। और पता है वो 700 किलोग्राम भार उठा सकता था।
7: 700 किलोग्राम?
4: हाँ, और वो भी बड़े आराम से।
5: 700 किलोग्राम?
4: हाँ।
5: इतना ज्यादा उठा लेता था वो घोड़ा?
4: हाँ श्रेया, अरे वो तो बहुत ताकतवर था,
6: लेकिन वो थोड़ा आलसी भी था। आलसी?
4: हाँ बच्चों, काम करने का उसका मन ही नहीं करता था। वो तो बस सोता रहता था घोड़े बेचकर।
5: पर वो तो खुद ही एक घोड़ा था।
4: लेकिन बच्चों, ये तो कहावत है ना, घोड़े बेच के सोना है।
5: फिर क्या हुआ?
6: फिर एक बार जैजू और मन्नू अपना मकान बदल रहे थे। वो घर का सारा सामान घोड़ा गाड़ी में लादने लगे।
4: और फिर जैजू और मन्नू के पिताजी ने कहा, हाँ,
8: सबसे पहले इस पानी की टंकी को रख देता हूँ घोड़ा गाड़ी पर।
4: फिर जैजू और मन्नू की मम्मी बोली,
6: ये रहे 5 बोरी गेहूं, इन्हें भी रख देती हूँ।
9: अरे अरे भाई, ये 3 मेज तो रह गए। अरे पापा।
8: अरे बेटा, ले आ ले आ।
4: और घोड़ा कहने लगा,
9: अरे इतना भार, अरे मैं कैसे उठाऊं,
8: पहले ही बहुत थक गया हूँ।
6: अरे रुको रुको, 4 कुर्सियाँ भी बाकी हैं। और उसके बाद जैजू और मन्नू ने 4 कुर्सियाँ, 1 अलमारी, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल और रखे।
4: तब घोड़ा बोला,
9: अरे इतना भार।
6: अरे रुको रुको रुको, अभी तो और भी सामान है। और तब जैजू और मन्नू ने 1 बांस की सीढ़ी, कुछ और बर्तन भी रख दिए।
4: और बच्चों, घोड़ा बोला,
9: अरे अरे अब मैं और नहीं उठा सकता इतना भार। अरे इतना सारा सामान, आज तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मेरे सिर में तो बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे
5: घोड़ा बोला, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। फिर क्या हुआ?
6: और तब जैजू और मन्नू के पापा ने उनसे कहा,
8: जैजू मन्नू।
9: जी पिताजी।
10: जी पिताजी।
8: भाई लगता है घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है। अरे वो 700 किलोग्राम से ज्यादा भार नहीं उठा सकता।
5: वो बहुत भारी हो गया था।
11: क्या वो 1000 किलोग्राम हो गया था?
6: अरे रुको रुको, पहले तो जैजू और मन्नू के पापा ने उन्हें सामान के बारे में बताया, वजन के बारे में जानकारी दी, और फिर जैजू और मन्नू सामान का भार जोड़ने लगे।
4: हाँ बच्चों, तुम भी जैजू और मन्नू का साथ दो और उनके साथ मिलकर सामान का भार जोड़ो।
7: ठीक है।
4: तो 1 गेहूं की बोरी का वजन है 100 किलोग्राम। हाँ, और 1 चावल की बोरी और 1 अलमारी मिलाकर हुई 105 किलोग्राम।
7: 105 किलोग्राम।
6: तो बच्चों बताओ, कुल कितना भार हुआ? 100 और 105 किलोग्राम।
7: 205।
4: 205 क्या?
7: ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
5: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, 205 किलोग्राम। हाँ, तो अब बारी आती है कुर्सी की। 1 कुर्सी का भार है 5 किलोग्राम। कितने किलोग्राम है?
7: 5 किलोग्राम।
4: और पहले जो भार था वो था 205 किलोग्राम। तो अब हमने इसमें 5 किलोग्राम और जोड़े तो कितना भार हो गया?
7: 210 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पे हो जाए ताली। हाँ तो भाई, अब बारी आती है पानी की टंकी की। और जानते हो पानी की टंकी का भार कितना है?
7: कितना है?
4: 50 किलोग्राम।
7: 50 किलोग्राम।
4: हाँ, तो अब बताओ कुल मिलाकर कितने किलोग्राम हुए? अभी तक भार था 210 किलोग्राम, उसमें हमने पानी की टंकी का भार जोड़ दिया, यानी कि 50 किलोग्राम जोड़ दिया, तो कुल मिलाकर कितने किलोग्राम भार हो गया?
7: 235 किलोग्राम।
4: अरे नहीं बचवा, 235 नहीं, 210 किलोग्राम और 50 किलोग्राम पानी की टंकी का भार मिलाया तो कुल मिला के कितना भार हो गया?
7: 260 किलोग्राम।
4: शाबाश, इसी बात पर बजाओ ताली। तो 260 किलोग्राम के बाद आया 10 किलोग्राम का मेज।
7: 270 ग्राम।
4: सिर्फ ग्राम?
5: किलोग्राम।
4: शाबाश, ये हुई ना बात, किलोग्राम। शाबाश।
6: और अब बारी आती है गद्दे की।
4: भाई एक गद्दा है 20 किलोग्राम का।
7: 290 किलोग्राम।
4: क्या बात है भाई, बच्चे वैसे बहुत होशियार हो गए हैं।
6: बहुत होशियार।
4: अब बारी आती है बांस की सीढ़ी की, जिसका भार है 10 किलोग्राम।
6: तो बच्चों अब बताओ कुल कितना भार हुआ?
4: यानी 290 किलोग्राम पहले और अब 10 किलोग्राम मिलके हो गया
7: 300 किलोग्राम।
6: ठीक बताया,
4: 300 किलोग्राम। अच्छा बर्तन तो रह गए है ना।
6: हाँ।
4: तो बर्तन हुए 10 किलोग्राम के।
7: 310 किलोग्राम।
4: हाँ, 310 किलोग्राम।
6: वाह वाह वाह, तो भाई ये तो सब बच्चों ने मिलकर बता दिया।
4: क्या बात है, क्या ताली।
6: तो बच्चों अब ये बताओ, 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कम हुआ या ज्यादा?
7: कम।
4: बच्चों, जैजू और मन्नू ने कहा, अरे घोड़े भाई, ये तो बस 310 किलोग्राम है, तुम तो 700 किलोग्राम भार उठा सकते हो। घोड़ा शर्माने लगा और बोला,
9: अरे अरे मेरी तबीयत तो एकदम ठीक है, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ।
11: मेरा तो सर दर्द भी नहीं हो रहा,
5: मेरे को टांग भी

0: ग्राम 700 किलोग्राम से कितना कम है, यानी कितने किलोग्राम कम है? सवाल एक बार फिर सुन लो। 310 किलोग्राम 700 किलोग्राम से कितने किलोग्राम कम है? तो घर जाकर सोचो और पता लगाओ, लेकिन जाने से पहले बजाओ ताली।
1: कितना हल्का कितना भारी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अब हम आज का अपना प्रसारण यहीं पर समाप्त करते हैं। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: मैं एक और एक डायरेक्टर के साथ काम काफी कर चुका हूँ, जैसे नासिर हुसैन। तो वो भी ऐसा करते थे कि गाना बनाने के टाइम में मेरे साथ शॉर्ट डिवीजन करते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि तुम गाना बनाओ, मैं शॉर्ट डिवीजन करूंगा। तो कभी कभी मुझे बोलते थे कि पहले शॉर्ट डिवीजन करके देता हूँ, तो पूरा शॉर्ट डिवीजन बताते थे और उस शॉर्ट डिवीजन से गाना निकलता था।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
2: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
1: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
2: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की में। आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हो। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन बी की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए,
निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो की FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
1: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
0: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियोस बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज के युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा एम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं, स्क्रिप्ट्स बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
0: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिले?
1: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखें तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
0: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
1: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
0: जी,
1: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है और कभी होगा भी नहीं। तो AI सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा, लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य उसके आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसके जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है,
0: जी हाँ,
1: लेकिन आप नहीं बनता।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि AI इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो है, सुनो शारदा 90.8 FM, हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि AI जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी AI अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते
1: जी।
0: तो क्या AI लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
1: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशन हो गए, तो वहां पर क्षेत्रीयता बदलेगी, क्षेत्रीयता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। AI निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। AI टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो AI टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुवादित कर अपनी भाषा में उन तक पहुँचा सकती हूँ।
0: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में AI अच्छा कंटेंट बना सकता है
1: जी।
0: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़े। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में AI की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट AI की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
1: देखिए, जब आपने कहा कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
0: जी,
1: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली, जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे 1-to-1 टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। AI उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, AI आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप AI की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। हाँ। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
0: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए, तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है, क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा, तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
0: जी बिल्कुल,
1: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दो क्या।
0: बिल्कुल,
1: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है
0: जी,
1: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
0: हाँ, सब अपने आप में
1: पूर्ण है, यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
0: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं। ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
1: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
0: बिल्कुल,
1: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बाकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
0: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
1: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, AI की मदद से आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते हैं उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
0: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
1: तो कहने का अर्थ यह कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है। लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य कार्य के प्रति अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना वो सब कुछ विश्वसनीय हो,
0: क्रेडिबिलिटी बहुत
1: जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा, वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा, आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
0: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
1: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल पूछ लिए।
0: जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
1: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
0: जी,
1: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
0: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है, रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है, क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
1: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी? मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा, तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से? मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
0: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये नैतिक रूप से सही है?
1: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
0: जी,
1: तो जो हमें यहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं, और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है, क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है, तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
0: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं, तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग, मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
1: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है।
0: जी,
1: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी, जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं।
0: जी,
1: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
0: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है।
0: जी बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो भी स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है, ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
1: देखिए मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन।
0: जी,
1: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्यों भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
1: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
0: जुड़ गए हैं हम,
1: जुड़ गए हैं। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज की जो गरिमा है, जिसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है।
0: जी,
1: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता।
0: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है, ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम हम छोटे स्टेशन हैं, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं उन्हें AI को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
1: जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट FM स्टेशन हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी जिंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर खास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं, तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हो या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि AI की दिल की आवाज के जरिए।
0: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं, तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या AI लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
1: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या AI मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या AI मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ, जिस भी क्षेत्र से? तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई, वो मांग कर यानी कि AI के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
0: बिल्कुल।
1: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, AI जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं, वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता, वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है, वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। AI फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
0: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
1: जी,
0: AI हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं, उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि FM रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे AI तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि AI हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह ओरिजिनलिटी

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात के माध्यम से जन जन को प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि जब आप 18 वर्ष के हो जाएं तो अपना वोटर कार्ड जरूर बनवाएं। वो कहते हैं कि इस उत्सव को अपने जन्मदिन के उत्सव की तरह ही मनाएं। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। साथियों, मतदाता ही लोकतंत्र की आत्मा होता है। साथियों, आम तौर पर जब कोई 18 साल का हो जाता है, मतदाता बन जाता है, तो उसे जीवन का एक सामान्य पड़ाव समझा जाता है। लेकिन दरअसल ये अवसर किसी भी भारतीय के जीवन का बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम देश में वोटर बनने का, मतदाता बनने का उत्सव मनाएं। जैसे हम जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक वैसे ही जब भी कोई युवा पहली बार मतदाता बने तो पूरा मोहल्ला, गांव या फिर शहर एकजुट होकर उसका अभिनंदन करे और मिठाइयां बांटी जाए। इससे लोगों में वोटिंग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इसके साथ ही यह भावना और सशक्त होगी कि एक वोटर होना कितना मायने रखता है। साथियों, देश में जो भी लोग चुनावी प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं, मैं उन सभी की बहुत सराहना करना चाहूंगा। आज मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। एक बार फिर आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।
0: अभी आप सुन रहे थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। वो कह रहे थे कि वोटर कार्ड जरूर बनवाएं और वोट जरूर डालें। और जैसे ही आप अपना पहला वोटर कार्ड बनवाएं तो उसे अपने जन्मदिन की ही तरह उत्सव के रूप में मनाएं। ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
1: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
0: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
1: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
0: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
2: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। ब्यूटिफुल सॉन्ग्स इंकलाबी जिद्दी फ्रॉम द मूवी गांधी टॉक्स, और इसको धुन से सजाया है AR रहमान, वोकल्स श्रेया घोषाल, लिरिक्स कुमार, ऑल न्यूज़ शारदा 90.8 FM इंकलाबी जिद्दी।

0: बोले हेलो कौन, अरे हम बोले हेलो कौन, अरे हम बोले हम बोले हम बोले हम बोले हम बोले
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया? नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी,
1: जैसे रहुआ कहला रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कौनो भी चीज में पानी जमा नहीं होके दे दीदी।

0: दिमागी बुखार से बची तो बेटा। बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ब जा मच्छर बन पर भारी।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग

आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को। सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग, यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव, अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: हाय, मैं हूं रण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते, मेरा नाम सिया है। मैं 12 साल की हूं और मैं स्कूल में पढ़ती हूं। मेरे को पढ़ना पसंद है और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना और बातें करना पसंद है। मैं कहानियां पढ़ती हूं, घर पर गेम्स खेलती हूं। सबसे ज्यादा तो मुझे भूतों की कहानी सुनना पसंद है। बहुत दिन पहले छुट्टी में मैं अपने गांव गई थी। गांव में मैं अपने दादा और अपनी दादी के साथ रोज घूमने जाती थी और फिर वहां जाकर मैं बहुत बीमार हो गई। मेरे गले पर एक बड़ा गोला जैसा बन गया था। अप्पा और अम्मा काफी डर गए थे। फिर वो मुझे गांव में डॉक्टर अंकल के पास ले गए। पता है, डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि मेरे को तो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी हो गई है। अब पूछो कि टीबी क्या होती है? ये बीमारी बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया पता है ना, ये बहुत छोटे छोटे कीटाणु जैसे होते हैं। ये नजर भी नहीं आते। वैसे तो ये हमारे फेफड़ों पर हमला करती है, लेकिन इसके कारण हमारे शरीर के दूसरे हिस्से में भी इन्फेक्शन हो सकता है। पता है, मुझे तो टीबी एक भूत जैसी लगती थी, बहुत डराती थी। फिर ना मुझे डॉक्टर अंकल ने समझाया कि टीबी तो किसी को भी हो सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसका पूरा इलाज हो सकता है। तब मैंने फैसला किया कि मुझे इस बीमारी से लड़ना ही होगा। इसके बाद 2 साल तक मेरा इलाज चला, क्योंकि ये वाली टीबी ना कुछ अलग तरह की थी। इतने दिन तक इलाज चलने के बाद भी मैंने तो सोच रखा था कि टीबी से लड़ती रहूंगी। इसकी दवा मुझे इतनी कड़वी लगती थी, फिर भी मुझे जूस के साथ ये दवा लेनी पड़ती थी। कभी कभी तो मुझे उल्टी भी होती थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर अंकल कहते थे कि अगर मुझे ठीक होना है तो दवा लेनी ही पड़ेगी। मैं रोज अपनी टैबलेट खाती थी और बहुत सारा अच्छा खाना भी खाती थी। मैं रोती भी थी, लेकिन हमेशा नहीं, सिर्फ कभी कभी, क्योंकि मैं बहादुर और स्ट्रांग हूँ ना। इसके बाद फिर कुछ ही दिनों में मैंने टीबी को हरा दिया। मैंने देखा कि ये भूत तो खुद ही डर कर भाग गया। मुझे बड़ा मजा आया। याद रखें, टीबी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अगर हम अपना ख्याल रखें तो इसके बैक्टीरिया को फैलने से रोक सकते हैं। आप सब लोग टीबी के लक्षण ध्यान से सुने और याद भी रखें। आपको बहुत सारी खांसी होगी जो 2 हफ्तों के बाद भी ठीक नहीं होती। सीने में दर्द होगा, खांसी या बलगम में खून निकलेगा। इसके अलावा अगर खूब ठंड लगे, रात को पसीना आए, भूख ना लगे या बुखार आए और कमजोरी जैसे लगने लगे, तो समझ जाना कि कुछ तो गड़बड़ है और तुरंत डॉक्टर अंकल के पास जाना। याद रखें कि आप भी टीबी को रोक सकते हैं। हमेशा मुंह ढककर खांसें, और यदि आपको टीबी के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही टीबी की जांच करवाएं। टीबी की जांच एवं इलाज सरकारी अस्पतालों और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त में करी जाती है। टीबी का इलाज पूरा करना जरूरी है। और हाँ, एक बात और, किसी भी टीबी मरीज के साथ भेदभाव कभी नहीं करना, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। टीबी का इलाज हो सकता है, आप इस बीमारी को हरा सकते हैं, जैसे मैंने हरा दिया। अच्छा, चलती हूँ, होमवर्क का टाइम हो गया।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा देश जीतेगा।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं. यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी. यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे. अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in.
2: डियर किरण, अक्सर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ. एक खत भी लिखना शुरू किया है, पता नहीं पोस्ट करने की हिम्मत होगी कि नहीं, पर बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ.

0: देवेश ये अभी 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा 21 का ही रहेगा।
1: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, विच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना

0: कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है।

0: और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
0: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
0: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?

0: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है।
0: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
0: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
0: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
1: Papa कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।